0: लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
7: एक्सक्यूज मी इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल
6: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
7: ओके देन Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPS Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता है?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।

Hello and welcome. Thank you so much for tuning in to 104.9 FM. Dosto yaro, main hu Paro, and I was enjoying this evening listening to Parul. Abhi main aa rahi thi to Parul ko main sunti hui aa rahi thi, and I listened to her mentioning about Paro calling Parul. Aur ye show bahut aziz hai, bahut dil ke kareeb hai mere bhi, aur kareeban mere khayal se 4 saal ho gaye honge when we used to do this show. 4 saal to at least ho gaye hain. But what is so रिमार्केबल कि अभी भी पारुल को भी कॉल आते हैं और मुझे यानी कि पारुल को भी कॉल आते हैं, आप लोग कॉल करते हैं एंड यू टॉक अबाउट दिस शो. 4 साल बाद भी कभी कोई हम फनीशिया की पार्टी या किसी जगह मुलाकात होती है लिसनर्स से, तो वो भी हमारे जो बहुत प्यारे लिसनर्स हैं वो याद करते हैं इस शो को और बोलते हैं अच्छा वही शो जो आप किया करते थे पारुल कॉलिंग पारुल. तो ये बहुत मैटर करता है हमें दैट यू रिमेम्बर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राइट, फनीशिया का जो हमारा ये रिश्ता है ये खाली आवाज़ का रिश्ता नहीं, आवाज़ का तो है, आप कॉल करते हैं आपकी आवाज हम तक पहुंचती है, हमारी आवाज यहां से आप तक पहुंचती है, ये खाली लेकिन आवाज का नहीं है, ये दिल का रिश्ता है, इमोशन का रिश्ता है, ये हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता है. वेलकम टू 104.9 FM.

AR रहमान की यादें ताज़ा हो गई, स्पेशली उनके ओरिजिनल वीडियो की. बट फिलहाल आपको बताना चाहती हूँ कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय कनेक्टिंग अमेरिका. एंड कनेक्टिंग अमेरिका क्या है और वो आपके लिए क्या कर सकता है ये ज़रूर बताना चाहती हूँ. विथ कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसिस इंटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी दैट इज़ डिज़ाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. यहीं पर नहीं ख़त्म होती है इनकी कहानी. दे कैन ऑल्सो हेल्प, दे डेफिनेटली हेल्प होम ओनर्स पे ऑफ देयर मॉर्गेज इन 10 ईयर्स और लेस. जी हाँ, 10 साल से अंदर अंदर, 10 साल के अंदर अंदर यू कैन एक्चुअली अंडर 10 ईयर्स यू कैन गेट रेड ऑफ दिस मॉर्गेज जो बड़ा भारी हमारे सर पर रहता है. सो डोंट वेट, कॉल जेम्स टुडे. नंबर है उनका 3218887345. थोड़ा सा अपना बोझ कम करने के लिए दिस इज वॉट यू नीड टू डू. यू नीड टू कॉल जेम्स और यू नीड टू विजिट connectingamericafinancials.com. ये पूरा एक ही वर्ड टुगेदर चलता है, connectingamericafinancials.com, and start turning your daily expenses into income. Connecting America is where smart business owners turn costs into cash. कोई अगर गाना सुनना चाहते हैं थर्सडे इवनिंग, बहुत स्पेशल इवनिंग है बिकॉज वी आर हेडिंग जस्ट इंचिंग क्लोजर आप कह सकते हैं. सो हेडिंग इंटू वीकेंड और बड़ा प्यारा मौसम है, बहुत अच्छा, लॉट ऑफ पीपल आर आउटडोर्स, नाइस वेदर. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग दैट सूट्स दिस इवनिंग, सूट्स दिस वेदर ऑफ ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुल सिटी डैलस, कॉल इन 972-355-5555 is the number to the studio.

इस गाने में तीन तीन धुरंधर कलाकार हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग, जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है, देखिए वैसे तो अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित इतने अकम्पलिश्ड और इतने बड़े स्टार्स हैं और इतने सारे उनकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दैट गोविंदा की बात अलग है क्योंकि इस गाने में गोविंदा भी है. और हेमंत साहब मेरी तरह गोविंदा साहब के फैन हैं, क्योंकि जैसे ये गाना चला तो उन्होंने कॉल करके एक गाने की फरमाइश करी जो गोविंदा का गाना है. वैसे कर सकते थे, वो कर सकते थे, कोई और भी कर सकता था, अमिताभ बच्चन या फिर माधुरी दीक्षित के किसी गाने के रिक्वेस्ट, लेकिन आया किसका, गोविंदा साहब का. क्योंकि गोविंदा साहब इज काइंड ऑफ आई फील डेजर्ट, कोई डेजर्ट होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी खाते हैं ना, मीठा थोड़ा खाते हैं तो और खाने का मन करता है, और खाने का मन करता है. गोविंदा साहब के साथ ऐसे ही है, बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट एंटरटेनर. देर आर वेरी फ्यू पीपल दैट आर एज ग्रेट एंटरटेनर्स एज हिम. एक बात के बारे में मैं सोच रही थी, क्योंकि कल हमारे एक लिसनर से बात हो रही थी, एंड आई वॉज सेइंग दैट इफ यू फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समबडी, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है, और आपने कल की बात कर रही थी मैं कि कल के दिन अगर आपने किसी को थैंक्स अभी तक नहीं बोला है तो अब बोल दीजिए. तो एक बड़े इंटरेस्टिंग लिसनर का हमारे पास कॉल आया, और जो लोग सुन रहे थे ऑन एयर उन्होंने सुना होगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को जब उनकी तारीफ करी तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया है, तुम अजीब सी बात क्यों कर रहे हो, बिकॉज दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड. तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मुझे फायदा नहीं हुआ, या मुझे ये चीज मेरे ऊपर लागू नहीं हुई, या समथिंग लाइक दैट ही सेड. एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम इट इज अबाउट कल्चरल कंडीशनिंग, एंड समटाइम्स इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू चेंज बिहेवियर्स. और इससे मुझे एक और अपनी बात याद आई दैट आई डेंट हैव द टाइम टू शेयर यस्टरडे, तो मैं आज आप लोगों से बताना चाहती हूँ दैट व्हेन आई मूव टू द यूएस, बहुत सारे यहाँ पे एक डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स हैं. आप कैसे थैंक यू बोलते हैं, अगर गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक में कोई आपको जगह देता है, देन यू वेव, यू आर ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट यू आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टू समबडी हु हैज डन समथिंग फॉर यू, चाहे आपके लिए दरवाजा खोला है, चाहे आपको किसी ने कुछ पानी ला के दिया, कुछ भी करा है, तो you always make sure that you spell out, you say it, you say thanks, you agar aapko gaadi mein, agar raste mein traffic mein kisi ne rasta de diya aapki gaadi ko, aapko rasta de diya, then you wave at them, you smile at them. To jab main yahan se wapas india gayi, pehli apni trip maine li aur maine yahan pe car chalani shuru kar di thi, to jab main wahan gayi and I was driving there, meri friend saath mein baithi thi, and wo friend india mein hi thi, wo us nahi aayi thi, to kisi ne rasta diya hame delhi mein, wo bhi delhi jaise shehar mein, to rasta diya meri गाड़ी को, और मैंने उसको वेव करा स्माइल करके, तो मेरी फ्रेंड कहती है तू क्या कर रही है पारू, ये क्या हरकत है, ये अजीब सी. मैंने कहा यार मैं थैंक्स बोल रही हूँ, उसने मुझे दिया है, जगह दी है, सो आई एम जस्ट, दिस इज द कल्चरल नॉर्म, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मैं यूएस के तौर तरीके से सीख गई थी. एंड शी सेड यार ये यूएस नहीं है, ये दिल्ली है, संभल के कहीं, बिकॉज दैट इज व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, द कल्चरल नॉर्म्स आर सो डिफरेंट, एंड समटाइम्स यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट, समटाइम्स वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन चेंजिंग, चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ आवरसेल्व्स एंड चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ अदर्स. 9723555555 स्टूडियो का नंबर, हेमंत साहब ये रहा आपका गाना.

डिस्को में जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू डांस, इफ यू वांट टू एंजॉय, वेल यू नो व्हाट टू डू, ट्यून इन टू 104.9 FM, क्योंकि यहाँ पे होती है सारी मस्ती और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज या इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड गिव अवेज एज वेल. आज मेरे पास एक नहीं दो दो गिव अवेज, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, सो आई वांट टू स्टार्ट अर्ली. तो अभी मैं बात करूंगी एक गिव अवे की एंड वो जो गिव अवे है व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज द इवेंट इट फॉर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. सो इफ यू लव सॉकर देन हियर समथिंग एक्साइटिंग फॉर यू. मैकिनी चुपाकैब्रास एफसी इज किकिंग ऑफ देयर होम ओपनर दिस मे 16th. आज है मे 14th, तो दो दिन की बात है ये ऑन मे 16th. एंड गेस व्हाट, पेज 3 ईटरी व्हिच इज सच अ पॉपुलर ईटिंग प्लेस अलॉन्ग विद फनीशा रेडियो, एंड यू नो फनीशा रेडियो इज गिविंग यू अ चांस टू बी देयर लाइव, एंड वी आर गिविंग टू फ्री टिकट्स राइट नाउ टू लकी लिसनर्स. लेकिन पहले आप सुन लीजिए, आपको एक जवाब देना होगा इसके लिए. सो यस, यू कैन गेट टू फ्री टिकट्स, सो 1+1. तो आप अगर कॉल करेंगे जीतेंगे तो यू विल गेट वन, यू कैन ब्रिंग योर प्लस वन एज वेल टू एंजॉय एन एक्शन पैक्ड गेम राइट हेयर इन DFW. तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू आंसर अ सिंपल फन क्वेश्चन सो यू कैन बी द नेक्स्ट विनर. पेज थ्री ईटरी एंड फनीशा, दे आर ब्रिंगिंग द गेम क्लोजर टू यू. फनीशा की तो हमेशा से कोशिश रहती है ब्रिंगिंग द कम्युनिटी, ब्रिंगिंग एवरीथिंग दैट यू लव क्लोजर टू यू, एंड दिस टाइम दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद पेज थ्री ईटरी टू ब्रिंग द गेम क्लोजर टू यू. सवाल क्या है, सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है. एंड हमारे बड़े सारे लिसनर्स को 90s के गाने और 90s की काफी चीजें पसंद हैं, सो इट्स रिलेटेड टू दैट. तो 90s में, यस 1990s में देर आर थ्री सुपर मॉडल्स, सो नेम एनी टू ऑफ द इंडियाज फर्स्ट थ्री सुपर मॉडल्स फ्रॉम द अर्ली 90s, वन ऑफ हुम लेटर मैरिड अ बॉलीवुड स्टार शी हैड डिस्कवर्ड. जी हाँ बिल्कुल, तीन सुपर मॉडल्स 90s की हैं इंडिया की, उनमें से आपको दो के नाम बताने हैं और एक बड़ी हिंट भी है कि इन तीनों में से एक जो है उसने एक बॉलीवुड के स्टार से शादी करी. और एक चीज और हिंट देना चाहती हूँ आपको, वन ऑफ देम वॉज ऑल्सो मिस इंडिया 1986. कॉल्स बजने लगी है मेरे पास, 972-355-5555 इज द स्टूडियो नंबर.

0: थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. लेकिन थोड़ा मुश्किल था ये सवाल. आई थिंक आई गॉट लाइक 10 रॉन्ग आंसर्स बिफोर somebody गेव द राइट आंसर. और कुछ लोगों ने एक नाम बताया, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि यू हैव टू नेम टू ऑफ द इंडियाज फर्स्ट 3 सुपर मॉडल्स. और बहुत सारे लोगों ने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन कहा. आई नो दैट सीम्स लाइक दे आर द फर्स्ट सुपर मॉडल्स बट एक्चुअली नॉट, बिकॉज यहां पर बात हो रही है मिस इंडिया 1986 की. और 1986 की मिस इंडिया रह चुकी हैं मेहर जैसिया, हु लेटर मैरिड अर्जुन रामपाल. सो दैट वाज द हिंट. मैंने कहा था 1986 की मिस इंडिया है एंड वन ऑफ देम मैरिड बॉलीवुड स्टार. सो यस, दैट वाज मेहर जैसिया. कुछ लोगों ने उसको सही बोला, लेकिन द अदर टू आर मधु सप्रे एंड मिलिंद सुमन. सो द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज हमिद सादी. हमिद सादी साहब, मुबारक हो आपको टू द टू टिकेट्स टू द गेम. And the also want to mention this to you that this is
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
8: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of

हेलो एंड वेलकम बैक टू 104.9 FM। और ब्रेक में जाने से पहले वी डिड दिस फन क्विज एंड गिव अवे ऑन ऑन द थ्री फर्स्ट सुपर मॉडल्स। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन दिस क्योंकि वी जस्ट हेडेड इन टू ब्रेक, तो ये बात मैं आपको नहीं बता पाई जो मैं बताना चाहती थी कि मेहर जैसिया, मधु सप्रे एंड मिलिंद सुमन, जो जिनको थ्री फर्स्ट सुपर मॉडल्स कहा जाता है, एंड दे ऑल केम इन द आइकॉनिक 1995 Tough Shoes ad. So if you watch that ad again, then you will know what I'm talking about, because I think thodi si yaadein bhi taza ho jati hain. I'm sure those of you grew up at that time, 80s and 90s mein jo aap bade hue hain, that made an impression at that time. Lekin uske baad itne sare log aa gaye aur mujhe lagta hai Aishwarya Rai aur Sushmita Sen ne itna world platform pe itni zyada wo famous ho gaye ki India ko wo world platform mein le gaye when it comes to modeling and pageants, ki log usse पहले वाले बहुत सारे भूल गए कौन लोग आए थे, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ आंसर्स आई वाज गेटिंग विद सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय, व्हिच इज गुड, व्हिच इज रियली कूडोस टू यू बोथ सुष्मिता सेन एंड ऐश्वर्या राय फॉर डूइंग दैट, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेंबर दैट देयर वर पीपल बिफोर देम एज वेल हु रियली डिड अ लॉट व्हेन इट केम टू मॉडलिंग। एंड आप लोगों के गाने चल रहे हैं अभी, अगर थोड़ी देर पहले गाना चलाया था वो मैंने अर्जुन रामपाल साहब का चलाया था, बहुत सारे अर्जुन रामपाल के साहब के गाने नहीं है क्योंकि थोड़ा विलन और उस तरह के रोल्स में वो ज्यादा आने लगे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर। बट इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड दैट यू वांट टू लिसन टू, यू कैन कॉल 972-355-5555। इन अ लिटिल बिट वी आर गोइंग टू डू अनदर गिव अवे एज वेल, एंड आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर जिसकी मैं थोड़ी देर में करूंगी बात। मुकाबला के गाने की मुकाबला राइट, दैट जो गाना है उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास कल आई थी, बट वी डिडंट हैव द टाइम टू प्ले, तो आज मैंने चलाना था एंड अभी मैं चला रही हूं क्योंकि कल रिक्वेस्ट आई थी एंड आई सेड दैट आई एम play it today, so I'm going to play it today. And this is the newer version. थोड़ी देर पहले मैंने पुराना version चलाया था, but I'm going to play the newer version.

0: थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिक्वेस्ट. लेकिन राहुल साहब, थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया आपने मुझे, बिकॉज आपने एक अजनबी का टाइटल गाना रिक्वेस्ट किया. फनिशर रेडियो, यू आर ऑन एयर.
1: Hi there. I wanted to make a request for my daughter.
0: Yeah, sure.
1: Her name is Prakriti.
0: Prakriti, बहुत अच्छा नाम है.
1: हाँ जी. कोई कोई भी गाना धुरंधर से. अगर आपका कोई थीम चल रहा है तो मैं I can request a different song.
0: No, of course. धुरंधर is perfect. धुरंधर सब थीम में फिट होती है सर.
1: तो शरारत शरारत प्ले कर दीजिए और उसका नाम भी बोल दीजिए.
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बोल दूंगी. थैंक यू सो मच.
1: यप, थैंक यू.
0: वैसे एक बात कहना चाहती हूँ, अभी व्हेन वी डिड दिस गिव अवे इन अ लिटिल वाइल बैक, मैंने बात करी अर्जुन रामपाल साहब की, एंड आई एम गेटिंग कॉल्स ऑन अर्जुन रामपाल्स सॉन्ग्स. तो इसे देख, बात तो बड़ी साबित हो गई कि बहुत बड़े फैन हैं. और देखिए, अभी धुरंधर का भी रिक्वेस्ट आ गई, और धुरंधर के बाद तो मुझे लगता है अर्जुन रामपाल, इवन तो उन्होंने विलन का काम किया, बड़े खराब विलन का काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है. तो उसके बाद उनके फैंस आई एम श्योर और ज्यादा बढ़ गए होंगे, बट ही हैज हिज ओन नीश कह सकते हैं फैन फॉलोइंग. तो राहुल साहब ने एक गाना रिक्वेस्ट किया, आपने कहा कि टाइटल सॉन्ग ऑफ एज एक अजनबी, और मैं तब से कोशिश किए जा रही हूं कि टाइटल सॉन्ग कौन सा एक अजनबी का, बिकॉज बट एक अजनबी उन्हीं की पिक्चर है फॉर श्योर, अमिताभ बच्चन भी है उसमें. आई थिंक दिस इज द टाइटल सॉन्ग, इफ आई बिकॉज दिस इज व्हाट इट सेज, तो ये टाइटल सॉन्ग है. पर मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने पूरा सुना नहीं, तो मुझे इसमें एक अजनबी नहीं आ रहा टाइटल वर्ड, बट कोई बात नहीं, हम फिट कर देंगे. बट हियर दिस गोज राहुल साहब आपके लिए, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्ले all the other request in the order that they came. Aur Prakriti ji, aapki request bhi aa rahi hai thodi si der mein. Papa ji ne kara hai aapke liye request.

वो मैथमेटिक्स याद आ गई मुझे. उसमें हम लोग जब मैथ्स पढ़ते थे तो ये बोलते थे थ्योरम या जो भी हमारा होता था कि हैंस प्रूव्ड. तो बिल्कुल राहुल साहब, यही है आपका गाना हैंस प्रूव्ड, क्योंकि बार बार बार बार बोल रहे हैं वो दिल को चुरा के ले गया एक अजनबी. प्रॉब्लम है थोड़ा सा, एक अजनबी चुरा कर ले गया, कोई जान पहचान वाला ले जाता तो अच्छा रहता, ये अजनबी कौन है. बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट टाइटल्स तो आ गया इसमें. सो यस, दिस इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ एक अजनबी. और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई एम लिसनिंग टू दिस लाइक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि अर्जुन रामपाल साहब की थोड़ी शुरू की फिल्म है एक अजनबी. बट ऑफकोर्स इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज राहुल साहब ने इस गाने की करी है रिक्वेस्ट. लेकिन देखिए, ऐसा भी व्हेन आई थिंक अबाउट यू नो दिस दीज ओल्ड सॉन्ग्स एंड दीज मेमोरीज एंड दीज ब्यूटिफुल टाइम्स, ऐसा मुझे लगता है स्पेशली मैं जब पुराने टाइम याद करती हूँ. एंड यू नो हम लोग स्कूल कॉलेज या उस टाइम की बात करते हैं, और जब भी ये पहले ये फिल्में आया करती थी इस तरीके, व्हेन एवर वी लिसन टू सॉन्ग्स लाइक मे बी फ्रॉम 20 years back or something like that, एक या इवन 30 years back, तो एक अलग टाइम में हम पहुंच जाते हैं. इट फील्स वेरी रिलैक्सिंग, इट फील्स की लाइक सारी टेंशन खत्म हो गई है. लेकिन कई बार हर हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हम, कई बार हमें इस रोजमर्रा की जिंदगी में रहते रहते ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे थोड़ी टेंशन कम हो जाए, जैसे कि ओशो यूनिवर्सल रिट्रीट. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट. शुरू हो गया है आज से, यानी कि May 14th, एंड इट्स गोना गो अंटिल May 17th. सो आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू ज्वाइन, वॉट यू हैव टू डू इज 3-day immersive journey, and it is basically to release stress, clear emotional blocks, and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. क्योंकि कभी कभी जिंदगी में द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर योरसेल्फ इज स्लो डाउन. भागते रहते हैं तेजी से धुरंधर की तरह. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. दोस्तों यारो, मैं हूं पारो, और देखिए अगला गाना भी कुछ इसी तरह का है. थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए हमें कह रहे हैं कमलेश साहब. कमलेश साहब ने करी है रिक्वेस्ट. अगेन अर्जुन रामपाल का ही गाना है, लेकिन ये गाना इज समथिंग दैट यू कैन, इफ यू आर नॉट ड्राइविंग यू कैन क्लोज योर आईज एंड लिसन टू इट एंड एंजॉय, एंड इफ यू आर ड्राइविंग कीप योर Or attention on the road, but you can still enjoy. थोड़ा गुनगुना सकते हैं साथ में.

कमलेश साहब ने प्रियांशु प्रियांशु चैटर्जी की याद दिला दी. ही वॉज ऑल्सो इन दिस फिल्म अलॉन्ग विद अर्जुन रामपाल एंड ऐश्वर्या राय, दिल का रिश्ता. और ये गाना तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था. अर्जुन रामपाल इज लुकिंग सो वेरी हैंडसम एंड प्रियांशु वॉज ऑल्सो लाइक अ वेरी फेमस मॉडल एंड एक्टर एट दैट टाइम. ज्यादा नहीं चले अर्जुन रामपाल, तो फिर भी आते रहे और बाद में विलन बन के, बट प्रियांशु इतने ज्यादा नहीं चले, लेकिन फिर भी आते रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा साइड रोल्स उस तरह से करते हुए. इंटरेस्टिंगली मैंने उन्हें रिसेंटली देखा 12th फेल जो फिल्म है उसमें एज DSP दुष्यंत सिंह. एंड एट दैट टाइम व्हेन आई सॉ ही एज्ड प्रीटी वेल, अगेन वेरी हैंडसम, अभी भी काफी हैंडसम ही लगते हैं. एंड व्हेन आई सॉ आई वाज लाइक बैक टू ऑल दोज डेज जब प्रियांशु जी बड़ा सेंसेशन हुआ करते थे. बट व्हेन इट कम्स टू वर्क आई डू थिंक दैट अर्जुन रामपाल हैज डिलीवर्ड सम रियली गुड परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग धुरंधर. और धुरंधर की बात करते हैं तो चलिए प्रकृति का गाना लगा देते हैं. एंड प्रकृति, आपके पापा जी ने करा है रिक्वेस्ट, योर नेम इज सो प्रेटी एंड देयर इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू.

विजय गांगुली के इसके जो हुक स्टेप्स हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं दैट आई हैव सीन सो मेनी पीपल ट्राइंग टू कॉपी इट एंड डू इट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स सो गुड. और ये तो मैंने आपको बताया नहीं, इतने सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं एंड आई हैव अ फ्यू मोर रिक्वेस्ट टू प्ले कि आज का क्या है स्पेशल दिन. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो सेलिब्रेट होती हैं, लेकिन मेरी फेवरेट चीज़ है विच इज़ डांस लाइक अ नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे. जी हाँ, एक्चुअली इट इज़ दैट वॉट दैट मीन्स इज दैट यू डांस योर हार्ट आउट. मतलब जैसे आप डांस करना चाहें, सिली तरीके से डांस विद अबैंडन जिसको बोलते हैं, मतलब कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, यू आर जस्ट डांसिंग लाइक अ चिकन. जैसे चिकन को नहीं फर्क पड़ता कुछ, वैसे तो मैंने देखा नहीं है चिकन को डांस करते हुए, हमें लगता है शायद चिकन डांस कर रहे हैं, बट व्हाटएवर द पॉइंट इज दैट नॉट केयरिंग फॉर एनीथिंग एल्स एंड दैट इज इन इटसेल्फ इज सच अ स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस बस्टर. तो आज का दिन इसीलिए है. तो अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है, सिली डांस नहीं किया है, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, बीवी क्या कहेगी, पति क्या कहेगा, मां बाप क्या कहेंगे, आपका दिल क्या कहेगा, इतने सारे सारे बंधनों में बंधे रहते हैं हम. तो पारो आज कहती है कि थोड़ा सा सिली डांस कर ही डालिए, स्पेशली इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर घर जाएंगे, ड्राइव कर रहे हैं, घर लौटेंगे, घर जाएंगे, थोड़ा सा शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा सा सिली डांस 5 मिनट ही सही कर लीजिए एंड बिलीव मी यू विल फील मच बेटर. एंड इफ यू डू इन फ्रंट ऑफ अदर्स दैट्स फाइन टू, इनफैक्ट दैट्स इवन बेटर, बिकॉज कभी कभी तो ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जिए जैसे जीना है. एंड यू नो व्हाट, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन आई डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं करती हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ब्रेक करना रूल्स को क्योंकि जब रूल्स को ब्रेक करते हैं तो एक अंदर से बड़ी बड़ी खुशी मिलती है, इन द सेंस दैट इट्स नॉट हार्मिंग एनीबडी, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप एक इनफैक्ट लोगों को और कुछ नहीं तो प्रेरणा ही दे रहे हैं. सो इन दैट वेज इट्स गुड. आई एम नॉट सेइंग ब्रेक रूल्स इन द वे दैट यू हर्ट अदर्स, नो नो नो, नेवर डू दैट, बट ब्रेकिंग रूल्स इन द सेंस दैट जो बेकार के बंधन है, बेकार में फंसा रखा है हमें, उन बंधनों को ब्रेक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. सो द इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस विद मी दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट जब कभी कभार मैं ऐसा करती हूं तो कई बार तो आसपास लोग, स्पेशली इन अ पार्टी, राइट, आई एम डूइंग अ वेरी सिली डांस, सो समटाइम्स पीपल आर लाइक अरे ये क्या करिए, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है. देन यू वेट फॉर 5 मिनट्स, दो लोग और ज्वाइन करेंगे, वेट फॉर अनदर 5 मिनट्स, 5 लोग और ज्वाइन करेंगे, बिकॉज दिस इंस्पायर्स पीपल कि अगर ये अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जी सकता है, जी सकती है, तो मैं क्यों नहीं. दैट इज फॉर मी द मोस्ट फन पार्ट. एक असमंजस में डाल दिया अनिकेत साहब, आपने मुझे, अंश आपके बड़े प्यारे बेटे हैं, उनके लिए मैं गाना चला रही हूं क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है, बट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड विच वन एग्जैक्टली यू वॉन्ट. और मैं 2-3 गाने तो सुन चुकी हूँ इस फिल्म के डी डे के, एंड क्योंकि सुखविंदर साहब का है और भी कुछ सिंगर्स हैं तो कुछ थोड़ा सा, सो आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग. इसमें ऋषि कपूर, इरफान, अर्जुन रामपाल, श्रुति हसन, ये सब हैं, लेकिन और सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर गाने में सुखविंदर सिंह नहीं है, लेकिन जिस दूसरे गाने में है आई फील दैट इज नॉट द राइट सॉन्ग. तो कहने का मतलब है, और मुझे पता है कि आपको नहीं एग्जैक्टली कौन पता था गाना, तो मैं ये वाला चलाती हूं, मुझे लगता है आपके बेटे अंश को बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस इज द सॉन्ग, और ये गाने के चलते चलते हम ब्रेक में चले जाएंगे, लेकिन लौट कर यहीं लौटेंगे ऑन 104.9 FM फनिशर रेडियो, पारो इन द हाउस.

0: गाना तो बहुत अच्छा है पर बड़ी सारी गोलियां चल रही हैं. सो यस, इसलिए आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. द लिरिक्स आर सो ब्यूटिफुल. सो आई रियली होप दैट यू इंजॉयड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ डी डे. और मैं इसको फिर से ध्यान से सुनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा. बट विल बी हेयरिंग इट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद यहीं पर लौटेंगे ऑन 104.9 एफएम.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस. चैट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
3: Contact 9453387670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
4: Chicken banana. Chicken banana?
5: Bro, banana nahi. Banana. मतलब make the chicken right.
2: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
9: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
10: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
11: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
12: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम बैक टू 104.9 FM. मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझती हूँ दैट वी आर प्लेइंग अ गेम. और आप इस हमारे जो लिसनर्स हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कुछ घर की तरफ लौट रहे हैं, कुछ बाजार में कुछ सब्जी वगैरह लेने गए होंगे, या कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए. लॉट ऑफ पीपल लिसन टू अस व्हेन दे आर ड्राइविंग, लॉट ऑफ पीपल लिसन टू अस व्हेन दे आर कुकिंग एंड दे आर होम. बहुत सारे लिसनर्स मुझे ये भी कहते हैं, हम आपको सुन रहे थे जब हम घर में कुछ काम कर रहे थे, लॉन्ड्री कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, वी वर लिसनिंग. तो हर बहुत अलग अलग तरह से हमारे लिसनर्स हमें सुनते हैं, ऐप से सुनते हैं, और फनेशिया 104.9 FM ट्रेडिशनल रेडियो से सुनते हैं. लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, शायद कुछ लिसनर्स शायद ये नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे जो मुझे पहले से सुनते हैं वो जानते होंगे कि पारो और हम मिलके एक गेम खेल रहे हैं. और गेम ये होता है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि एक बात शुरू होती है और उसके साथ फिर आप कनेक्ट करके एक पूरी पिक्चर बना देते हैं, पूरा एक शो बना देते हैं. मैं शो में थोड़े से डॉट्स ही लेकर आती हूँ और उसके बाद तो पूरा का पूरा शो आप ही कंस्ट्रक्ट करते हैं. एब्सोल्युटली लव दैट इनोवेशन. जैसे मैं अगर बात करूं अर्जुन रामपाल साहब की, ऐसी बात उठी थी एक गिव अवे से, और इतने सारे मेरे पास अर्जुन रामपाल साहब की रिक्वेस्ट आई. फिर इंटरेस्टिंगली उनकी रिक्वेस्ट से चलते चलते एक रिक्वेस्ट आई जिसमें प्रियांशु चैटर्जी भी थे, और प्रियांशु चैटर्जी की रिक्वेस्ट आई एक एक्चुअली उनकी अर्जुन रामपाल के साथ थे वो उस गाने में, लेकिन चूंकि वो उस गाने में थे और मैंने उनका मेंशन किया, तो अशोक साहब ने उनके गाने की, उनके आइकॉनिक गाने के, जिस गाने के लिए वो जाने जाते हैं बहुत ज्यादा, प्रियांशु चैटर्जी, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम आई थिंक इट्स 2000 और लाइक लेट 90s की इनकी फिल्म है तुम बिन, बहुत ज्यादा इसके 90s की फिल्म है, बहुत ज्यादा गाने पॉपुलर हुए थे, तो उसके टाइटल सॉन्ग की रिक्वेस्ट करी अशोक साहब. अशोक साहब, आपके पास बड़े अच्छे नॉलेज भी है और आपका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा है गानों में, तो आई ऑलवेज लाइक योर चॉइस, सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग तुम बिन.

2001 की है ये फिल्म. एक्चुअली फॉर सम रीजन मुझे 90s की लगती है, बट तुम बिन जो है 2001 की है. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन प्रियांशु चटर्जी एंड ऋतिक रोशन. बहुत हैंडसम है ये भी, एंड इन मेनी वेज दे हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर फीचर्स. लेकिन ऋतिक साहब ने तो खैर बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा उन्होंने इस तरह का रोल्स परफॉर्मेंसेज दी हैं, बिकॉज एक्टिंग इन सम फिल्म्स ही हैज डन वेरी गुड एक्टिंग फॉर श्योर. थोड़ी उनकी परफॉर्मेंस मुझे इनकंसिस्टेंट लगती है, कुछ फिल्मों में ज्यादा अच्छी कुछ में ओके, बट व्हेन इट कम्स टू डांस हिज परफॉर्मेंस इज ऑलवेज A1. डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ डांस, वो थोड़ा सा भी हिल भी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा करते हैं. सो ही इज एट अ क्लास अपार्ट व्हेन इट कम्स टू डांसिंग. बट यस, प्रियांशु चटर्जी का ये गाना अशोक साहब ने करा था रिक्वेस्ट. आई डू वॉन्ट टेल यू दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा, एंड द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विद ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट. इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लिप और फॉल इंसिडेंट, आई वॉन्ट यू टू नो दैट अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड गेट यू द हेल्प एंड द कंपनसेशन दैट यू डिजर्व. इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, सो यू नीड एन अटॉर्नी दैट इज ऑन योर साइड एंड विल मेक श्योर दैट यू गेट कंपनसेटेड, सो यू डोंट पे अंटिल यू विन. ये सबसे अच्छी बात है. तो यू कैन कॉल देम फॉर अ फ्री कंसल्टेशन. नंबर है 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomer.com. टुडे इज द डे, अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो आपको बता दूं टुडे इज द डे विच इज मे 14th इज नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे. तो यस, इसका मीनिंग है कि आप सिली डांस करें, एंड इट इज अबाउट हैविंग, इट्स अबाउट नॉट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग सिली, इट्स अबाउट एनकरेजिंग लाफ्टर एंड स्ट्रेस रिलीफ, ब्रेकिंग रूटीन विद समथिंग फ्लेवरफुल. हमेशा ये चीज सही करनी है, सही करनी है, क्यों करनी है भाई, सही बहुत ज्यादा सही सही हो गया, नाउ जस्ट डू things that are silly. So, and it's also about bringing people together through shared silliness. कई बार जो बचपन की silliness होती है, जो बचपन में मस्ती silliness और not thinking too much about this and that, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, right? जो मन में आ रहा है वो करते हैं, जो मन में आ रहा है वो बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है सामने वाला देख रहा है क्या सोचेगा, doesn't matter, सोच रहा है उसका प्रॉब्लम है, उसको सोचने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है. एंड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज ऑल्सो द रीजन कि ना ब्लड प्रेशर है ना प्रॉब्लम है. बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो दूसरों को होती है, आसपास वालों को. सो समटाइम्स आई थिंक वी नीड टू बी लाइक दैट, वी नीड टू डांस लाइक चिकन, क्योंकि दूसरों को करने दो ना, दूसरों को टेंशन होगी हमें देख के, हमें क्या फर्क पड़ता है. विद दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड सो इट्स रियली अबाउट डांसिंग लाइक चिकन, लिटरली डांसिंग लाइक चिकन. वेल, यू कैन डू एनी सिली डांस एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. वही कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर चिकन डांस करना चाहते हो तो उसके बारे में बताऊंगी. फिलहाल मुझे रणवीर का सिली डांस, रणवीर सिंह का सिली डांस जब भी वो करते हैं बहुत पसंद आता है. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. ए वही डांस करते हैं.

चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, पार्ले जी का बिस्कुट हो गया. रणवीर सिंह इज नोन फॉर हिज गूफी स्टेप्स, नॉट जस्ट इन दिस सॉन्ग बट इन अ लॉट ऑफ, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स अ परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली ही इज नॉट ट्रूली बीइंग गूफी व्हेन इट इज ऑन कैमरा, बिकॉज इस गूफीनेस के लिए भी बहुत प्रिपरेशन होती है इनकी, लेकिन वो नहीं है आज का दिन. आज का दिन है सच में यू कैन बी गूफी इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स टू सेलिब्रेट नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे. और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला गिव अवे. So here's your chance to win the kadai paneer or kadai chicken from Chandigarh Bites in LN. Plus enjoy the special thali from Monday to Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. Located off McDermott Drive in LN, visit chandigarhbites.com for details. जी हाँ, आप अगर उनके lunch time में जाएंगे, you will get a lot of variety of thali. अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ. रणवीर सिंह से भी ज्यादा number one goofy dancer कौन है Bollywood का of all times? आप जानते होंगे, जो लोग मुझे बहुत टाइम से सुन रहे हैं, 6 साल से ज्यादा होंगे मुझे रेडियो पे, आप जानते होंगे कि कौन है मेरा फेवरेट एक्टर इस मामले में, क्रेजीनेस में. उनका मैं गाना चलाऊंगी. अगला गाना चलते ही समझ जाएंगे आप कि कौन मियां हैं ये, कौन जनाब हैं ये. ऑल यू हैव टू डू इज, देखिए लाइन मेरी बजने लगी, लेकिन ये सवाल नहीं है मेरा कि ये कौन है, क्योंकि वो तो हर कोई जानता है ये कौन है. तो अभी आप थोड़ा सा सवाल सुनिए. सवाल ये है कि इनको एक महाभारत, जो बी आर चोपड़ा का वेरी फेमस महाभारत टीवी सीरीज था 1980s का, इसमें कौन सा रोल ऑफर हुआ था जो इन्होंने डिक्लाइन किया. इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी बिहाइंड इट. लाइंस बज रही हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं. 9723555555. द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज गोना विन ईदर कड़ाई पनीर और कड़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. कौन सा रोल इन जनाब को महाभारत, बी आर चोपड़ा के महाभारत में ऑफर किया गया था?

कट गया, लेकिन आप फिर से कॉल कर सकते हैं. बट आई डू वांट टू से कि विनर मेरे को मिल चुके हैं. बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आए एंड मोस्ट ऑफ देम गॉट राइट. आई थिंक एक दो लोगों ने शायद लॉर्ड कृष्णा या अर्जुन का रोल बोला, लेकिन अभिमन्यु गोविंदा साहब ने जब ऑडिशन किया था उन्हें अभिमन्यु का रोल मिला था इन द वेरी पॉपुलर माइथोलॉजिकल सीरीज महाभारत, जो लेट 1980s में आई है 1988 स्पेशली उस टाइम पे. एंड इट वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम जब उन्हें ये मिल गया था रोल. लेकिन उसी टाइम पर उनको He was also auditioning for Bollywood. तन बदन फिल्म के लिए भी उनको खुशबू के साथ उसमें भी उनको रोल मिल गया था. आई थिंक देर इज ऑल्सो द स्टोरी दैट उनकी जो मदर है उन्होंने उन्हें मना किया इवन आफ्टर ही गॉट महाभारत रोल. एंड ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा था, हर किसी को पता था बीआर चोपड़ा का, तो उसमें रोल मिलना बड़ी बात है. और आप सब जानते हैं कि महाभारत के जो एक्टर्स हैं उनकी मतलब सबकी एक लाइफ बन गई इस तरह से हुआ है. बट गोविंदा साहब की जो मदर थी वो विजनरी थी एंड उन्होंने ये कहा कि बेटा फिल्मों में जाओ. एंड स्पेशली बिकॉज गोविंदा का जो बड़े हुए हैं बहुत गरीबी में, उनके फादर का सब बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल लॉस हो गया था. अरुण नाम था उनके फादर का एंड ही वॉज अ हीरो एज वेल इन हिज टाइम, लेकिन बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया. फिल्म बनाते थे वो एंड चाल में आ गए, बहुत चौल में, जैसे बम्बई की चौल होती है, बहुत गरीबी में गोविंदा साहब का टाइम निकला है. यंग एज ऐसे निकला है, उसके बारे में वो बहुत बात करते हैं. तो उनको बस नंबर वन बनना था, उनको सिर्फ नंबर वन हीरो बनना था. एंड ना आओ देखा ना ताओ एंड दैट्स व्हाट ही वांटेड टू डू. और उनकी मदर का सर पे आशीर्वाद था और गाइडेंस था, और मदर ने कहा कि बेटा फिल्मों में जाओ, फिल्म में ही तुम्हें नंबर वन बनाएंगी. सो आई रियली लव दिस स्टोरी, क्योंकि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट इवन ऑडिशन फॉर फिल्म्स कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, इतना बड़ा हमें टीवी सीरीज में अच्छा खासा रोल मिल गया अभिमन्यु का, अब और क्या पापड़ बेलने की जरूरत है. लेकिन जब कर पापड़ नहीं बेलेंगे तो नंबर वन कैसे बनेंगे. सो आई एब्सोल्युटली लव दैट स्टोरी एंड आई एम क्यूरियस टू गोविंदाज मदर फॉर थिंकिंग अहेड. और हमारे विनर जिन्होंने द फर्स्ट पर्सन टू गिव द राइट आंसर इज सुमित कुकरेजा साहब, मुबारक हो आपको. एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे एक लिसनर ने सुमित कुकरेजा साहब से पहले सही जवाब दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे गिव अवे नहीं चाहिए कि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वन इन द सेम गिव अवे इन द लास्ट वन मंथ. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स. एंड विद दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट लनक्सी मेडिकल. सो डैलस, वॉट इफ गोइंग टू अ क्लिनिक एक्चुअली फेल्ट इंजॉयबल? थिंक अबाउट इट. अगर आप किसी क्लिनिक जाए और आपको बहुत अच्छा लगे, दैट इज गोइंग टू बी लनक्सी मेडिकल. सो मे 16th, आज है 14th, सो दो दिन में है मे 16th. यू कैन स्टेप इन टू अ होली न्यू healthcare experience at Lanaxi Medical, which is Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. You can sip from a custom latte bar, enjoy nothing but cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, you can enter into their grand opening raffle for a chance to win exciting med spa prizes. Kahan par hai ye Lanaxi Medical? It is at 9191 Kaiser Way. KYSER Kaiser Way, Suite 205, Frisco.

0: दोस्तों यारो, मैं हूँ पारो। आज आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी छोड़ के जा रही हूँ, यानी कि आई विल बी सीइंग यू नाउ ऑन मंडे। मंडे को रात के 7 बजे होगी हमारी मुलाकात, एंड आई होप यू हैव अ लवली वीकेंड फ्राइडे एंड डेफिनेटली दिस वीकेंड एज वेल, एंड यू एंजॉय द ब्यूटिफुल वेदर। डैलस हमारा बड़ा खुला खुला खिला खिला वेदर है। आई होप यू डू दैट, एंड आई होप यू डांस लाइक अ चिकन। थोड़ा सा तो कर लीजिएगा आज पारो की बात मान के। पुट योर हैंड्स अंडर योर आर्मपिट्स लाइक विंग्स, फ्लैप योर एल्बोज 4 times। बस इतना सा करिए 4 बार आज के दिन, एंड यू विल फील रियली डी स्ट्रेस्ड बिकॉज टूडे इज नेशनल डांस लाइक अ चिकन डे। विद दैट आई वॉन्ट टू से हैव अ ग्रेट वीकेंड। आरजे पारो साइनिंग ऑफ।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ।
11: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी गारंटी है।
10: कैसे?
11: Page 3 eatery?
10: No, not another restaurant again.
11: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
12: Page 3 eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
14: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: चॉक टू चाइना। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कम्फर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुल्चा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0400 K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी, डायग्नोसिस क्लियर है। आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
14: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: सब कुछ साफ रख सकते हो,
1: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
4: Babaji Biryanis in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Babaji Plano or visit babajiplano.com.
5: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apne kalam से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
5: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Zimbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

Yeah.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: He's got very little time.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: क्यों

0: playing the music you want all day, every day, only on Fun Asia Radio.
1: हाँ भाई सेठी।
2: हाँ जी मनी पाजी।
1: पहुंच गए हैं?
2: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
1: ओ पार्टी दी कसरत है तेनू, हाले पार्टी करदा दे है तू।
3: पाजी उस गोरे से करने के बाद एक बार भी यहाँ आए हो?
1: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
2: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
1: तू लगता है तू पैग लाए होया।
4: तू इधर कर, तू सो जा, आराम कर।
2: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है। पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
4: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा,
1: मेरी फ्लाइट है, तू सो जा।
2: पर दादी

0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
2: Hi this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station Fun Asia Radio

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, हमें साथ रखिए। मंजिल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे, हमें साथ रखिए। आपका साथी, आपका हमसफर, हर पहर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: The one you've had on repeat is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
5: 4.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: ये क्या कर रहे हो चंदर? लाओ मेरा गीता बल्ला, लाओ।
1: गीतों से मियाँ तानसेन, कानों में शहद तो भरा जा सकता है लेकिन पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती, समझे?
0: तुमने फिर शुरू कर दी ना अपनी कीड़ों वाली बोली। जब देखो ये गिरा लगा रखते हो, भूख लगी है, भूख लगी है। लाओ दबाओ।
1: भूख दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस बात को अपने दिल से तुम भी मानते हो और इसीलिए अपना और मेरा हिस्सा जेब में दबाए रखते हो। मैं तुमसे अपना हिस्सा मांग रहा हूँ।
0: कौन सा हिस्सा? 2 रुपए थे उसमें से 1 रुपया तुम्हें दे दिया है। दिया है कि नहीं?
1: दिया। मैं कहा इनकार कर रहा हूँ। अब 1 रुपया तुम्हारे पास बचा है कि नहीं?
0: बचा है।
1: और उस 1 रुपए में से मैं 50 पैसे मांग रहा हूँ, अपना हिस्सा। 50-50 हमारा परमानेंट एग्रीमेंट है कि नहीं?
0: तेरी तो भूख की ऐसी की ऐसी।
2: कमाल के लोग रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में, गा रहे थे तो महसूस होता था किसी ने अमृत पिला दिया हो मेरी कविता को। लड़ने लगे तो मरने मारने के लिए तैयार हो गए।
3: पुराने दोस्त हैं, साथ रहते भी हैं, रोज लड़ते भी हैं, मगर दोस्ती में कभी फर्क नहीं आता।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है। सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
3: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
4: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
5: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

पार्टी करो कहना क्यों नहीं मानते जीने के दिन होते हैं बस चार इंसान के शर्माना और घबराना ये दोनों चीजें छोड़ दो रूल्स और डांस फ्लोर ये दोनों चीजें तोड़ दो शुभ होए बादशाह

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Desi Swag. Desi Swag. Bollywood Tag. Fun Asia. Fun Asia.
1: Ha ha ha.

0: समझे।
1: बढ़िया।
2: कितने आदमी थे?
3: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.
2: निया, 4 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई.
3: I need your help. Please, Ronnie.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां।
3: जुल्फें सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज़ ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Amreen at 214-909-6601.
4: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
3: Amreen Salon, style that moves with you.
5: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: मुझे थोड़ा आगे चल।
1: Playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: Don't touch that dial. Keep listening.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: So let me present to you the Pandavas.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
1: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
2: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: काला जादू कर दिया तेरी आँख सोनी,

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
3: Official tax and finance partner, AG Fintax.
2: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
4: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस, ओनली वन नेम पॉप्स अप, एजी फिनटैक्स। दिस टैक्स सीजन, फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग, फाइल स्मार्ट, फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस, एन एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स। साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना, दैट्स आवर कमिटमेंट। तो इस बार डिले क्यों, कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com। ग्रंथी टैक्स प्रोस, पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स। प्लान टुडे, प्रॉफिट टुमारो।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
4: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: playing the music you want all day, every day, only on Funasia Radio.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
13: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
12: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
13: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
14: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
15: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
16: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
17: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
7: मिलती हो तो क्या होगा, डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फन एशिया रेडियो के साथ।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्टबीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्टबीट्स।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
6: क्या?
5: सैलरी बंद हो जाती है.
6: और बिल्स बंद नहीं होते.
5: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
6: मतलब?
5: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
3: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
12: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: कभी सोचा है हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: जीने लगा।
1: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
2: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
1: रोज का सेम प्रॉब्लम।
3: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर।

0: ISD standards ko match hi nahi, exceed karta hai.
1: Personalized learning plans in math and English for kids aged 5 to 13. Continuous feedback, on-demand support, aur har step par strong critical thinking.
0: Conveniently located at Coet and Panther Creek in Frisco.
2: Call 972-666-1181 or mention kare Phanasia, get $100 off your first month. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
3: चिकन बनाना
4: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
2: दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस एट साल्स नैशविल हॉट चिकन दे डोंट जस्ट मेक इट अनफॉरगेटेबल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बोल्ड फ्लेवर्स जंबो चिकन टेंडर्स नैशविल सैंडविचेस दैट एक्चुअली हिट लोकेटेड इन प्लेनो एंड रिचर्डसन साल्स नैशविल हॉट चिकन वी फिक्स हैंग्री
5: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
6: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी
5: K2 ड्राइव मतलब
6: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है
5: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
6: 100%
7: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me. It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
10: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
11: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
11: वेट व्हाट
12: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
13: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन
14: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
15: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
16: इट्स लॉसन
15: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
16: इट्स लॉसन
15: डैडी व्हाट इज द लॉ
17: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 द ट्रेवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रेवल
18: अटेंशन स्टोर ओनर्स रवि's समर किक ऑफ इज बैक June 3rd एंड June 4th 9 AM टू 5 PM एंड दिस ईयर इट्स डिफरेंट वी आर टर्निंग द वेयरहाउस इनटू अ फुल ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस विद क्रेजी डील्स यू वोंट फाइंड anywhere new product launches and free gifts all day meet vendors discover your next best sellers and stock up like never before same Ravi's just bigger bolder and way more fun Ravi's import warehouse 11029 Harry Hines Boulevard building A Dallas Texas 75229 entry requires a valid tax number and tobacco license

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरियोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। टैलिस्मैन रेडियो का टैग फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
1: हेलो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज गपशप गली विथ मी टू कवरिंग फॉर शबनम जी टुडे एज वेल। शी विल बी बैक ऑन मंडे और तब आपके न्यूज का जो पूरा एक इंतजाम होता है that she brings for all of us, the world news and everything else that she shares, we will get all of that. Trust me, I miss it too. You are listening to me right now और मैं आपके साथ 12:30 तक होने वाली हूँ। Yes, it's an extended show with me that you're going to enjoy. And to enjoy, ज़रूरी है कि आपके गाने और dedications हम तक पहुँचती रहें। This is, after all, कुछ आपकी पसंद और कुछ मेरी पसंद। It is Friday, ladies and gentlemen. And I want to make sure that this warm and windy Friday that we are going to have today, I make the best of it along with you.

0: एंड इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन 15th of May और घड़ी में हमारे बजे हैं 8:18 दैट यू मस्ट मैच योर क्लॉक विथ. और हमारी घड़ी तेज रफ्तार से फ्राइडे के दिन बढ़ती रहती है और बस उस तेज रफ्तार का आप हिस्सा बने क्योंकि आज के दिन कोई गमगीन गाने ना सुनते हैं ना सुनवाते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल आई हैव ऑन माई शोज ऑन फ्राइडेज. और इसीलिए यहाँ पर ना कुछ और एक अच्छी बात बताने वाली हूँ एंड इट इज अबाउट ड्रीम होम मॉर्गेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंस 1998 कितने लोगों के सपने उन्होंने पूरे किए हैं एंड इट इज आई एम श्योर व्हाट एन इनक्रेडिबल जॉब दे हैव. वो जो हंसी या स्माइल जो एक होती होगी ना अपना घर एक पाने के बाद और एक ऐसे प्रोसेस से गुजरने के बाद विच इज़ एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री एंड टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस दैट दे ब्रिंग फॉर यू, तो स्माइल तो उसके लिए दुगनी होती होगी आई एम श्योर. आप अपने ड्रीम को रियलिटी बना सकते हैं विद ड्रीम होम मॉर्गेज. और याद रखें मेरे शो पे हर मंडे को 10:30 मिस्टर हुसैन पंजवानी इज ऑन द एयरवेव्स टू गिव यू सम टिप्स एंड एडवाइसेस एंड ट्रस्ट मी इट्स समथिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. और एक जो ये एजुकेशन जो होता है ना इन सब चीज़ों के बारे में दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, नो मोर अबाउट the investment, the biggest investment probably that you're going to make in your life. So dreamhomemortgage.com, zarur yaad rakhiyega to go to that website and check out all the information.
1: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: Arre wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
2: Arre sare to same hai.
1: Nahi, wo Shri Krishna se jo liya tha na humne. ये ये ये देखो ये वाला.
2: ओह हाँ ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: O haseena zulfon wale jaane jahan.
7: Zulfen sirf hawa mein nahi, style mein bhi udni chahiye. Bollywood style layers ho, soft curls ho ya complete hair makeover. Ambreen Salon gives you that perfect hairstyle, jo aapki personality ko kare highlight. Because great hair doesn't just change your look, it changes your confidence. Mention Fun Asia and get 10% off on your hairstyle service. Call Ambreen at 214-909-6601.
3: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
7: Ambreen Salon. Style that moves with you.
8: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
11: क्या मतलब?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता. Because it's never trained to pause. That's why meditation matters.
5: Kitne apps try kiye yaar, but...
14: Then don't try alone. Experience it at Osho Transformation Retreat.
4: May 14th to May 17th. A 3-day immersive journey to release stress, clear emotional blocks and reconnect with your inner self through powerful meditation techniques guided by experienced facilitators. Register now at oshouniversal.org. Pause the noise. Meet yourself.
15: Tracks that put you on the right track.

मेरा बस चलता तो ये मैं क्लासिक्स में अभी ऐड कर देती सीरियसली. अ सॉन्ग बिकम्स अ क्लासिक मच लेटर राइट. लेकिन ये गाना ए आर रहमान का मुझे लगता है वेरी स्पेशल एंड नॉट जस्ट फॉर द रीजन दैट इट इज कंपोज्ड वेल एंड संग वेल ऑल ऑफ दैट बट इट इज प्रेजेंटेड वेल एज वेल. ईशान खट्टर किल्स इट लेडीज एंड जेंटलमैन. और विजय गांगुली को भी एक क्लासिक का खिताब देना चाहिए. व्हाट एन अमेजिंग कोरियोग्राफी फॉर दिस सॉन्ग दैट ही डिड राइट. और अगर क्लासिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे टेलर स्विफ्ट के एल्बम 1989 के बारे में बात करना चाहती हूँ. ग्लैडिस नाइट और पिप्स के बारे में बात करना चाहती हूँ. पॉल अंका के बारे में बात करना चाहती हूँ. ओरिजिनल कास्ट एल्बम ऑफ शिकागो के बारे में बात करना चाहती हूँ. एंड दैट इज बिकॉज दीज आर जस्ट सम ऑफ द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स टू बी एडेड टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल रिकॉर्डिंग रजिस्ट्री. तो ये हुआ कल. द लाइब्रेरी अनाउंस 25 रिकॉर्डिंग्स आर बींग एडेड टू द रजिस्ट्री. इट्स कलेक्शन ऑफ ऑडियो टू बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जेनरेशंस. नाउ दिस ईयर्स इंडक्टीज विच रिप्रेजेंट यू नो आर नेशंस आर्टिस्टिक कल्चरल एंड हिस्टोरिक हेरिटेज. इनके जो जॉनरस हैं वो हैं फ्रॉम जैज रॉक पॉप कंट्री आर एंड बी एंड ब्रॉडवे एज वेल एज रेडियो एंड वीडियो गेम्स एज वेल. तो मोस्ट रिसेंट रिकॉर्डिंग्स जो अगर इस साल की लिस्ट में देखा जाए तो टेलर स्विफ्ट के 2014 एल्बम 1918 को इंक्लूड किया गया है. एंड द पॉप आइकॉन्स फिफ्थ स्टूडियो एल्बम विच वन एल्बम ऑफ द ईयर एंड बेस्ट पॉप वोकल एल्बम एट द ग्रैमीज. और सिर्फ यही नहीं जो बियॉन्से का जो गाना है 2008 का जो हिट है सिंगल लेडीज पुट रिंग ऑन इट दैट इज गोइंग इन टू द लाइब्रेरी एज वेल. दैट इज गोइंग इन टू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल रिकॉर्डिंग रजिस्ट्री. द रिकॉर्डिंग्स एडेड दिस ईयर ब्रिंग द नंबर ऑफ टाइटल्स ऑन रजिस्ट्री टू 700. जस्ट अ पोर्शन ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रिकॉर्डेड साउंड कलेक्शन ऑफ नियरली 4 million items, and that calls for that Beyonce gana. What say? This is Gupshup Gali with me too.

0: सुने और बड़े ध्यान से सुने. दिस इज फनीशर रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. और ये है गपशप गली विद मी टू. क्या है ना कि जिंदगी में कुछ भी हमें ना फ्री में नहीं मिलता. नथिंग इन लाइफ कम्स फॉर फ्री. किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार चाहिए तो डेडिकेशन खर्च करना ही होगा, विश्वास चाहिए तो लॉयल्टी खर्च करनी ही होगी भाई, साथ चाहिए तो समय खर्च करना ही होगा आपको. किसी ने बिल्कुल ये चीज़ जो बात कही ना, बिल्कुल खरी कही है कि रिश्ते जो है मुफ्त में मिलते हैं. ये किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं. मुफ्त तो जिंदगी में भाई हवा भी नहीं मिलती. एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है. वेल, नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईजी, नथिंग इन लाइफ इज फ्री. तो कोई बात नहीं है यार, हम जो है दिलो जान से हम मेहनत कर लेंगे यार, डालेंगे ना 100% एफर्ट अपना और करेंगे ना खर्च अपना वक्त फॉर गुड वर्क, गुड रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू, लेडीज एंड जेंटलमैन. वैसे फ्री आपको एक चीज मिलता है एंड इट इज एट देसी मंडी दैट यू गेट अ ग्रैंड डील, लेडीज एंड जेंटलमैन. और वो डील है बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस मंडे एंड वेंसडे, और ट्यूजडे और थर्सडे को बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. एवरी वीक डे फ्रॉम 5 PM to 9 PM, no mix and matches allowed, but what they can promise is more flavor, more savings all week long. This is Desi Mandi, ladies and gentlemen, biggest South Asian grocery store in town.
1: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
2: एग्जैक्टली. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
1: ओ गॉड, पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
2: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
1: कैसे?
2: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
1: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
2: या कैरेट लेन काइंड.
3: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry, made to be worn, not stored. Carrot Lane, a Tata product, now open in Frisco.
4: यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today.

वी आर ऑन द 20th वीक ऑफ द ईयर, और यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि वी आर ऑन द 135th डे ऑफ द ईयर, यानी कि 230 दिन इस साल के बाकी हैं। होपफुली आपने जो जैसा प्लान किया है वैसा ही चल रहा है, अगर नहीं भी चल रहा है तो बहुत सारे दिन बाकी है टू मेक इट वर्क फॉर ऑल ऑफ यू, टू मेक दिस ईयर रियली वर्क फॉर यू। मई 15, 2026 की आज की तारीख है, लेकिन मैं ले जाने वाली हूँ आपको मई 15, 1940 को। मई 15, 1940 को एक हिस्टोरिक फास्ट फूड लवर्स की जो ये स्टोरी है मैं वो लेकर आना चाहती हूँ। मैकडॉनल्ड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सैन बर्नार्डिनो ऑफ कैलिफोर्निया में जो ये दो ब्रदर्स थे ना, डिक और मैक मैकडॉनल्ड, इन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था आज के दिन। दे फादर वॉज लीड ऑफ फ्रॉम अ शू फैक्ट्री आफ्टर सर्विंग 42 ईयर्स, तो ब्रदर्स डिसाइडेड कि वो लेने वाले हैं चार्ज फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर का, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। उन्होंने शुरू किया द स्पीडी सर्विस सिस्टम, और उस जमाने में ना लोग कार में बैठे रहते थे फॉर द फूड, और खाना आने में बहुत वक्त लग जाता था। बट द ब्रदर्स दे केम अप विद दिस असेंबली लाइन सिस्टम, जहां हर एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक टास्क था फ्रॉम स्टार्ट टू बॉक्सिंग अप द मील्स। यू नो, जैसे कि अगर आप इमेजिन करें चिपोटले, एंड वी सी द पीपल हैंडिंग डाउन द मील्स, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड फाइनली समबडी इज कलेक्टिंग द पेमेंट फॉर इट। सो ये था असेंबली लाइन सिस्टम, एंड दिस सब्सटैंशली सॉर्ट ऑफ डिक्रीज द टाइम फ्रॉम ग्रिल टू कस्टमर, एंड इसका मतलब हुआ कि वो एक खाना गर्म भी पहुंचेगा और जल्दी भी पहुंचेगा। फिर एंट्री होती है रे क्रॉक की, और ये जनाब जो थे, ये मिल्कशेक मिक्सर जो थे, सेल्समैन थे, हु सॉ द मैजिक ऑफ दिस स्पीडी सिस्टम एंड साइंड ऑन एज द फ्रेंचाइज एजेंट। लेकिन इस अर्ली सक्सेस के साथ शुरू हुआ एक मैसिव पावर स्ट्रगल। नाउ मैकडॉनल्ड ब्रदर्स सिर्फ अपने लॉयल कस्टमर्स और सैन बर्नार्डिनो की लोकल जो बिजनेस थे उस पर वो फोकस करना चाहते थे, जबकि क्रॉक जो थे वो उनको चाहिए था एक रैपिड एग्रेसिव एक्सपेंशन, और आखिर में क्रॉक उनका बिजनेस खरीदने में सक्सेसफुल हो गए और वो मैकडॉनल्ड्स के सोल ओनर बन गए। नाउ क्रॉक्स प्लान फॉर एक्सपेंशन वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ जीनियस। आपको शायद लगता होगा कि मैकडॉनल्ड्स अपना ज्यादा पैसा जो है इट गेट्स फ्रॉम बर्गर्स एंड फ्राइज, नो नॉट एट ऑल। उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट एक्चुअली उनकी रियल एस्टेट है। नाउ द कॉरपोरेशन बाइज अप द एब्सोल्यूट बेस्ट लोकेशंस एंड देन लीजेस देम आउट टू द इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज। तो ये फ्रेंचाइज ओनर्स सिर्फ स्टार्टअप फीस नहीं दे रहे होते, वो सीधा मैकडॉनल्ड्स को रेंट पे कर रहे होते हैं फॉर द प्लेस ऑल्सो। इनकी पैशन और इनोवेशन का जो है ना एक ये एक जो कल्चर फिर बना फास्ट फूड का, इतना बड़ा क्रेज जो हुआ, हैट्स ऑफ टू द टू ऑफ देम। तो अगली बार जब आप गर्मा गर्म फ्राइज पिकअप करने जाओगे या बर्गर पिकअप करने के लिए जाओगे, तो याद रखिएगा दिस इनक्रेडिबल हसल दैट वेंट बिहाइंड इट। दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑल द वे टिल 12:30।

Listen, I've really enjoyed this song, and whatever we like, we definitely get it for you. This is Adnan Sami's voice on Tanish Bagchi's music. Tanish Bagchi वो कंपोजर हैं जो रीमेक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे ओरिजिनल गाने भी उन्होंने कमाल के बनाए हैं. एक और गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ वेरी स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू, विच केम आउट जस्ट 2 weeks बैक, और ये गाना है जहाँ पे तनिश बागची गा भी रहे हैं और उन्होंने कॉम्पोज भी किया है और उन्होंने लिरिक्स भी लिखा है. भगवान जब किसी को देते हैं ना तो यार छप्पड़ फाड़ के देते हैं. एंड यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू, जहां पे हमारा म्यूजिक वाइब जो है आज का बिल्कुल फ्राइडे के मूड के साथ मैच करता हुआ है.

0: Hope you enjoyed this song written and sung and composed by Tanish Bagchi. अब जिंदगी जिस तरह से हम कॉम्पोजिशन चाहते हैं अपनी जिंदगी की वैसी ही चलती तो क्या बात थी. तो फिर एक्सीडेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट होता है और बिना बताए होता है. और ऐसे में अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये वो हैं जो आपको आपकी कॉम्पनसेशन जो आप डिज़र्व करते हो बिना किसी स्ट्रेस के आपको दिलाते हैं. एंड द प्रॉमिस दैट दे मेक इज़ कि आप तब तक नहीं पे करते हो जब तक आपको कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता है. सो फॉर दैट फ्री कंसल्टेशन गेट इन टच विद अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम. attorneyomar.com इज द वेबसाइट. मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi dono ek saath ek hi jagah HEB mein. Royal Sona Masoori rice ho, Nanak paneer ho ya Parle Ji biscuits, wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo sirf yahi milte hain. Ek hi trip, ek hi store. और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license. Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना,
12: फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
10: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.
14: Tracks that put you on the right track.

Kanishk Seth at the helm of this song. Kanishk Seth, who is Kavita Seth's son. और ये गाना मुझे काफ़ी पसंद आया था. इट इज़ फ्रॉम डबल XL, सोनाक्षी सिन्हा एंड हुमा कुरैशी, दैट फिल्म. और कनिष्क सेठ सिंस देन हैज़ बीन कंपोजिंग लॉट ऑफ म्यूजिक, इंक्लूडिंग द वन दैट हैज़ बीन वन ऑफ आवर फेवरेट्स एक्चुअली, एंड इट इज़ फ्रॉम जुग जुग जी ऑफ कोर्स. उसका ना एक लाइव वर्जन आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ. तो थोड़ा बहुत ये ऑडियंस का चेयर होगा, क्लैप्स होंगे, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू लिसन टू इज दिस अमेजिंग फीमेल सिंगर हु इज अकम्पनिंग हिम हियर. वैसे तो ओरिजिनल गाने में कविता सेठ की आवाज़ थी, बट स्टेज परफॉर्मेंस में, इस लाइव कॉन्सर्ट में देवाश्री मनोहर की आवाज़ है. आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू इट गुड. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. लेट्स गेट यू दिस नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
5: क्योंकि ये कौन बोला
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पॉलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
6: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
7: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
8: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी
7: K2 ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है
7: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
8: 100%
9: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
11: फ्रंट पेज का तो पता नहीं पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है
10: कैसे
11: पेज 3 ईटरी
10: नो नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन
11: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
13: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
14: Tracks that put you on the right track.

0: सुनना।
1: एक पैशनेट लव स्टोरी बताई जा रही है, ये इंटेंस और पैशनेट लव स्टोरी है और जो May 22 को रिलीज हो रही है धर्मा प्रोडक्शंस की ये फिल्म विच इज डायरेक्टेड बाय विवेक सोनी और उसी का ये गाना सुन रहे थे। फिल्म का नाम चांद मेरा दिल विच हैज़ अनन्या पांडे इन द लीडिंग रोल अलॉन्ग विथ लक्ष्य कपूर। लक्ष्य कपूर वो हैं जिन्हें पहली बार मैंने अच्छे से जो देखा वो देखा किल फिल्म में, विच वॉज दिस एक्शन थ्रिलर। आई एम नॉट द एक्शन जॉनर लवर, लेकिन ये एक फिल्म थी जो इतनी वेल मेड थी एंड इट बिकेम सच अ बिग हिट एट द बॉक्स ऑफिस कि अब गेस व्हाट, किल टू का जो है साइन अप कर चुके हैं लक्ष्य कपूर को फिर एक बार किल टू के लिए। एंड अलग कहानी इस कमांडो की होगी इस फिल्म में। और द बिग प्रॉब्लम हियर दैट आई एम सीइंग हियर इज निखिल नागेश भट्ट, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे फॉर द फिल्म किल आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इस फिल्म के डायरेक्टर नहीं होने वाले, किल टू के डायरेक्टर नहीं होने वाले बिकॉज ही इज बिजी विद सम अदर प्रोजेक्ट। नाउ आई होप दे गेट द राइट पर्सन ऑन बोर्ड फॉर किल टू, अदरवाइज वो बिल्कुल फिज हो जाएगा, फिजल जो है उसका बिल्कुल नहीं काम करेगा जो किल के लिए काम किया था। होपफुली दे गेट द राइट पीपल, आई एम श्योर लॉट इज at stake for them to take the right decisions. And if you are in Salina, well, you have taken the right decision for sure. क्योंकि आपने notice किया होगा कि हमारे शहर के आसपास कितनी सारी भीड़ हो रही है। The new census data is finally out and it confirms that North Texas is officially the fastest growing region in the entire country. रूटीन मानिए टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से 4 तो भाई हमारे अपने नॉर्थ टेक्सस के सबर्ब्स हैं। सलाइना हैज वंस अगेन टेकन द नंबर 1 स्पॉट विद अ स्टैगरिंग 24.6% पॉपुलेशन इंक्रीज इन जस्ट 1 ईयर। मतलब हर दूसरा इंसान समझे सलाइना मूव करने की सोच रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेट स्कूल्स दैट आर कमिंग अप एंड सेफ नेबरहुड्स ऑल ऑफ दैट। Following Salina, we have Princeton at number 3, Melissa at number 4, and Anna at number 5 on the national list. Basically, Collin County is where all the action is happening right now. And let's not forget Fort Worth, ladies and gentlemen, which saw the second largest numeric increase by adding nearly 20,000 new residents. McKinney bhi piche nahi hai, ranking 10th for the biggest jump in pure population numbers. Other local favorites like Forney and Greenville also made it into the top 15 most popular spots in the US. So, ye maine socha ki saath hi saath aap logon ke share karte chale along with a song from the film Kill. This is Gupshup Gali with me too.

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू। हमारी गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन कल एक खास इवेंट है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज बाय लिनोक्सी मेडिकल, और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू नो क्लिनिक्स की जो विजिट है वो थोड़ी सी इंजॉयबल बनाने की यहाँ पे कोशिश, क्योंकि May 16 टुमारो यू कैन स्टेप इनटू अ होल न्यू हेल्थ केयर एक्सपीरियंस एट लिनोक्सी मेडिकल, एंड इट इज टेक्सस प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स ग्रैंड रिबन कटिंग फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, और ये हो रहा है फ्रिस्को में, जहाँ पे आप आराम से इनके कस्टम लाटे बार का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, साथ में नथिंग बन केक, आइसक्रीम एंड मोर वाइल टूरिंग देयर मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक दैट यू कैन टेक अ टूर ऑफ। एंड ऑफ कोर्स आप उनकी स्टाफ से बातचीत करें, सी हाउ यू फील अबाउट इट, बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कैसा है माहौल, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और वो माहौल आप तभी जज कर सकते हो जब आप एक विजिट करके आते हो उनके पास और बातचीत करके देखे हाउ यू फील अबाउट ऑल ऑफ दैट। इट इज लाइक कॉलेज एप्लीकेशंस, या कि मैंने ये बातें सुनी हुई थी पहले, लेकिन कॉलेज एप्लीकेशंस तक आऊंगी, लेकिन पहले लेट मी टेल यू ऑल दिस ग्रैंड ओपनिंग जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये इनके ग्रैंड ओपनिंग पे रैफल्स भी हैं और आप एक्साइटिंग मेट्सपा प्राइजेस भी जीत सकते हैं। लिनोक्सी मेडिकल विच इज एट 9191 काइजर वे सुइट 205 इन फ्रिस्को। सो इफ यू आर ड्राइविंग आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये रजिस्टर करना शायद मुश्किल रहा होगा, लेकिन अगर आप हमें कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो भी होंगे आजे दे विल बी हैप्पी टू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ यू। Once again, it's Lunoxy Medical, and they are bringing for you this grand opening, and it is happening tomorrow between 2 PM to 4 PM in Frisco, and be part of it. So, college application. मैं ये बात कर रही थी कि सुना हुआ था मैंने कि कॉलेज एप्लीकेशन की बात ऐसी होती है कि जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, टेक अ टूर ऑफ दैट प्लेस, गेट द वाइब ऑफ दैट प्लेस, बहुत ज़रूरी होता है यार। हम जब स्कूल कॉलेजेस में बड़े हो रहे थे तब हम कहाँ ये सारी चीज़ें करते थे कि यू नो जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ जाके उस कॉलेज की फील लो, देखो इफ़ यू बिलोंग टू दैट कॉलेज एंड ऑल दैट। बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन हैपनिंग इन दिस कंट्री, और राइटली सो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ज़रूरी होता है ये कॉलेज टूर लेना और फिगर आउट करना कि क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है कि नहीं। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी टू।

यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम. घड़ी मिला लीजिए, इट इज 38 मिनट्स पास 9 बाय द स्टूडियो क्लॉक और ये है फ्राइडे 15th मई. इस अगले के गाने के साथ ना एक छोटे से ब्रेक पे जाने वाली हूँ और वापस आके बहुत सारी बातें हैं. दिस इज गपशप करी विद मी टू.

0: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
1: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
2: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
1: रोज का सेम प्रॉब्लम।
3: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। Lumity लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। Lumity का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
4: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
5: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
6: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर

0: होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री। NMLS 2025289। लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सास। ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल। इक्वल हाउसिंग लेंडर।
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
2: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
1: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
10: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
11: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
12: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
13: Isse pehle ki aap ise ek ad samajhkar channel badal dein, hum aapse kuch kehna chahte hain. Yaad hai aapko? जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे, मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क लाना। दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us.
14: Tracks that put you on the right track.

अगर आपको अपने बॉलीवुड म्यूजिक से प्यार है तो ये अगला सवाल जो आपके लिए है, इट इज एस्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आप अपने गानों के लिरिक्स अच्छी तरह से जानते हो तो बिल्कुल नंबर स्टूडियो का हैंडी रखें, 972-235-5555। लिसन, बिफोर आई गो टू दैट, मैं जल्दी से ना वेदर अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये गाना कुछ उसी से एसोसिएटेड है, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी विंडी टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर। तो मैंने सोचा कि बस हवा के साथ ही कुछ बात करते हैं through the song that I'm going to play next for all of you, और उसमें आपको fill in the blanks करना है। I'll tell you about that, लेकिन चलिए weather के बारे में थोड़ा सा update देते चलें आपको। warm है आज, windy रहने वाला है और humidity भी बढ़ने वाली है आज through the weekend also that I'm talking about. Highs will be around 90 each day with a wind gust of over 30 miles per hour that I'm talking about here. अब कुछ locations में isolated shower or thunderstorms की possibility है, and that is by late afternoon going into evening hours, और ये जो chance है वो northwest of DFW में ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और ज़्यादातर weekend जो है dry दिख रहा है मुझे यहाँ पर, but there could be some isolated storms late Sunday as well, especially west of DFW by Sunday night, that you can expect. More robust rain and storm chances arrive next week for all of us. The unsettled weather pattern could last into the Memorial Day weekend. Aaj ka high once again 90 degrees, ladies and gentlemen, and aaj ka low hoga 72 ke aaspaas. And right now it is 75 degrees. Tomorrow's high will be again 90, and Sunday ka bhi kuch aisa hi haal hai. Kuch few degrees actually lower that we'll get because of the rain and all of that will bring it down a tad bit. So yeah, that's your today's update and the weekend's update. Now let's get to the game that I am going to play with all of you. So ek bahut popular sa gana hai jiska mukhda main lagane wali hu, aur usme ek jagah pe main ek background music dene wali hu, aur wo line kya hai us jagah pe, that is what you have to fill in aur batana hai mujhe. कॉल करके 972-235-5555, बेटर स्टिल इफ यू कैन सिंग इट फॉर ऑल ऑफ अस लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि इसके बदले में वन ऑफ यू, द फर्स्ट वन टू कॉल मी एंड गिव मी द राइट आंसर, इज गोइंग टू गेट दिस दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्रॉम फ्लेवर लाउंज। तालियां हो जाए इसी बात पे। ये जो कमाल के ये लोग गिव अवेज लेकर आते हैं ना, रियली वी मस्ट गिव अ बिग शाउट आउट टू फ्लेवर लाउंज, क्योंकि इतने सारे फ्लेवर्स जो हैं उनमें से जो बढ़िया सा गिव अवे उन्होंने हमें दिया है, उसके साथ बाकी खानों का भी फ्लेवर आप जरूर ले। एवरीथिंग इज अमेजिंग एट द फ्लेवर लाउंज, एंड दिस इज डाइन इन ओनली गिव अवे दैट आई एम गोइंग टू गिव वन ऑफ यू, जिन्होंने पिछले एक महीने में जीता नहीं हो, प्लीज लेट्स डू दैट, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीत पाए। सो हियर वी गो with the Ghana that I'm going to play for all of you right now from yesteryear classic pitara that I'm opening up for all of you here. You have to guess the lines that I sort of embellish with my own background music. And here we go, that very popular song from Sita or Geeta.

0: क्या हमें समझ में आया कि कौन सी लाइन स्मैक आ गई बीच में? लेट्स सी इफ एनीबडी कैन गेस. थी कि दो कॉल आ रहे थे, दोनों एक साथ ड्रॉप हुए. यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए वो कौन से लाइंस थे जो मैं खा गई बीच में.
1: हेलो,
0: हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: आर यू टॉकिंग टू मी?
0: यस, आई एम टॉकिंग टू यू.
1: यस,
0: टेल मी व्हाट्स योर नेम.
1: हवा के साथ साथ घटा के संग संग उसाती चल, बिजली के साथ चल तू, यूरी दिन रात चल तू.
0: यस, एब्सोल्युटली.
1: आई कांट सिंग वेल.
0: आई एब्सोल्युटली गेट यू. इट इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग इन ऑर्डर टू गेट द टू मिसिंग लाइंस इन बिटवीन, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. एंड व्हाट्स योर नेम?
1: पिया.
0: पिया, आपको मिलता है फ्लेवर लाउंज से दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी. नॉट दैट यू हैव टू टेल मी, बट आई एम सो क्यूरियस टू नो कि आप क्या खाएंगी वहां पर.
1: दाल मखनी एंड व्हाट
0: वाज द अदर? ढाबा स्टाइल चिकन करी. इन दोनों में से आप क्या चूज करना पसंद?
1: वही
0: ढाबा स्टाइल चिकन करी.
1: उतना नहीं चलता है.
0: अच्छा
1: जी, एकदम
0: मैं भी आपके साथ हूँ इसमें. एंड दिस इज ए डाइन इन ओनली गिव अवे दैट यू वन फ्रॉम दिस फ्रिस्को लोकेशन ऑफ द फ्लेवर लाउंज. पिया, यू नीड टू होल्ड द लाइन एंड आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग जिसके दो लाइन जो मैं खा गई थी, जो आपको फिल करना था. इट वॉज मुझे लेके साथ चल तू, यू ही दिन रात चल तू. थैंक यू वेरी मच पिया फॉर बींग पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग्स गिव अवे. चले ये गाना शुरू करें शुरू से.
2: हवा के साथ साथ,
3: अरे रे रे,
2: घटा के संग संग
3: संभलना.
2: हवा के साथ साथ

0: लिसन, दैट इज द सॉन्ग फ्रॉम सीता और गीता. और पिया लेके गई हैं गिव अवे फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. आई हैव मेनी मोर गिव अवेज क्योंकि मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 12:30 बजे तक. सी रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे मेरा जो शो होता है 10 से 12:30 के बीच, राइट आफ्टर शबनम जी आई कम. एंड यस, शबनम जी गई हुई हैं एक छोटे से वेकेशन पे, तो मैं आ गई यहाँ पे कवर करने के लिए आपके साथ, आपके बीच 8 बजे से हूँ. लेकिन वो जो आप लोगों से एनर्जी मिलती रहती है ना, दैट इज़ वॉट कीप्स अस गोइंग. और इसीलिए बहुत सारी और एक्साइटिंग न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू अलोंग विथ आई टोल्ड यू ना गिव अवेज. उसके लिए भी ट्यून्ड इन रहें और सुनते रहें गपशप गली विथ मी टू राइट हियर.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
3: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
4: इट्स लॉसन.
3: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
4: इट्स लॉसन.
3: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
5: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
6: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन. आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड.
7: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल.
6: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल.
7: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
12: ये क्या होता है?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
15: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703 303-732-1777.
4: Tracks that put you on the right track.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विथ मी. और अगर आप अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं तो भाई काफ़ी लेट कर दी, क्योंकि मैंने 8 बजे से शो शुरू किया. कहाँ थे आप? और अगर आप तैयार शेयर होके काम पे निकले हैं या चोर्स निपटाने के लिए निकले हैं तो वेलकम ऑन बोर्ड. एंड चलिए शुरू करते हैं ये फ्राइडे का सफ़र जो आपका है. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड दिस इज वंस अगेन फनीशर रेडियो 104.9 FM. और हर फ्राइडे की तरह आज के दिन भी विल ब्रिंग ऑन द वाइब ऑफ ए गॉर्जियस वंडरफुल वीकेंड दैट यू गोइंग टू हैव अहेड. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
1: Mamu, देखो क्या हो गया.
2: ओ, क्या हो गया?
1: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
2: ओए, जर्मन का कमाल है.
1: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
2: ओए नहीं, ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
4: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
5: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
4: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
6: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
7: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. कॉल अमरीन एट 214-909-6601
5: और विजिट देयर इंस्टाग्राम अमरीन सैलून, लोकेटेड एट एलन एंड फ्रिस्को.
7: अमरीन सैलून, स्टाइल दैट मूव्स विद यू. तुमने फिर कार्ड यूज किया?
8: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
9: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
8: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
10: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
11: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

And it is all gulabi indeed at AT&T Stadium. I do need to tell you all, the World Cup fever is officially taking over our very own AT&T Stadium. Ya use Dallas Stadium bula lijiye. FIFA has officially replaced a classic Cowboys artificial turf with a brand new beautiful natural grass pitch. Aur ye koi regular grass nahi hai. The field surface, a Kentucky bluegrass and ryegrass mix, was grown in Colorado before being transported roughly 800 miles to North Texas for the Dallas Stadium turf. और वहाँ के जो स्टेडियम के जो जनरल मैनेजर हैं टॉड मार्टिन, उन्होंने ये कहा कि इट टुक रफली 45,000 मैन आवर्स एंड 15,000 टन्स ऑफ मटेरियल्स टू मेक दिस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हैपन. नाउ इस पिच के नीचे एक पूरा हाईटेक वेंटिलेशन और इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है ताकि ये ग्रास टूर्नामेंट के दौरान बिल्कुल फ्रेश रहे. बट द एब्सोल्यूट क्रेजीएस्ट पार्ट इज द 18 जायंट pink grow lights hanging from the stadium ceiling to keep the grass perfectly healthy. Officials said the lighting system is being used for the very first time in the history of FIFA World Cup and will be raised before the matches begin. ये जो डैलस स्टेडियम का जो ये नाम है, इसका जून 14th में ये सारा कुछ हमें जो ये इतनी सारी तैयारियां हैं वो देखने को मिलेंगी व्हेन वी सी द वेरी फर्स्ट मैच ऑन संडे जून 14 बिटवीन जापान एंड नेदरलैंड्स. और जब नेदरलैंड्स की बात की कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टेल यू अबाउट द जबरदस्त डबल डेकर ऑरेंज बस दैट इज इन द स्टेट नाउ. जी हाँ, ह्यूस्टन में अराइव कर चुका है कल. और ये आइकॉनिक बस पूरी दुनिया ट्रैवल करती है और अब ये टेक्सास आ चुकी है वर्ल्ड कप की अल्टीमेट पार्टी को शुरू करने के लिए, फीफा वर्ल्ड कप पार्टी को शुरू करने के लिए. सो यस, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, डू रिमेंबर टू चेक आउट ऑल द न्यूज अबाउट फीफा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ऑल पार्टी, विच ऑल्सो मीन्स कि बहुत सारा जो भीड़ मिलेगा हमें उसके लिए भी आप पहले से ही तैयार हो जाएं. इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन फीफा वर्ल्ड कप विच स्टार्ट्स ऑन जून 14th इन डैलस. And with the semi-final match happening on July 14th here in Dallas Stadium. This is Gapshap Gali with me too.

वी वर टॉकिंग अबाउट यू नो फीफा, तो मैंने सोचा कि इसी के चलते एक और आपके लिए न्यूज लेकर आ जाए फीफा के बारे में ही, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी इन आर सिटी. वेल वी हैव टू स्टे अप टू डेट. नहीं, जैसे जैसे 2026 वर्ल्ड कप पास आ रहा है ना, हर कोई किसी ना किसी टीम को सपोर्ट करने में की तैयारी में लग चुका है. बट इफ यू डोंट नो मच अबाउट सॉकर, लेज हैज ए हिलेरियस न्यू कैंपेन जस्ट फॉर यू, विच इज कॉल्ड जंप ऑन अमेरिका. इस नए एड में ना कमेडियन विल फेरल एक लिटरल बैंड वैगन चला रहे हैं और उनके साथ हैं डेविड बेकहम और मार्शन लिंच के साथ. ये जो पूरा हंगामा चल रहा है, द होल आइडिया इज टू फ्लिप the insult of being a bandwagon fan into a nationwide invitation to just join the fun. उनका मैसेज बहुत ही सिंपल है. आपको हर प्लेयर के स्टैट्स पता हो ये जरूरी नहीं है, बस एक लेस का बैग उठाएं और इंजॉय करें ये स्पोर्ट विथ एवरीबडी एल्स. एंड द एब्सोल्यूट बेस्ट पार्ट इज दैट लेस इज एक्चुअली टेकिंग दिस फिजिकल बैंड वैगन ऑन अ कोस्ट टू कोस्ट टूर अक्रॉस द कंट्री. एंड गेस व्हाट, एलए और न्यूयॉर्क के साथ साथ ये टूर हमारे अपने शहर डैलस में भी रुकने वाला है. सो यू कैन लिटरली हॉप ऑन द बैंड वैगन राइट हियर इन द मेट्रोप्लेक्स एंड सोक इन द अमेजिंग वर्ल्ड कप स्पिरिट. और इसके अलावा उन्होंने कुछ लिमिटेड एडिशन चिप्स के फ्लेवर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि अर्जेंटीनियन स्टाइल स्टेक और ब्राजीलियन स्टाइल गार्लिक सॉस फ्लेवर्स, ये जो लेकर आए हैं चिप्स में. एंड दे आल्सो आर डूइंग सम क्रेजी गिव अवेज ऑनलाइन, इंक्लूडिंग स्पेशल जर्सीज एंड इंटरचेंजेबल कंट्री पैचेस एंड इवन टिकट्स टू द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल. सो यस, द वर्ल्ड कप फीवर इज ऑफिशियली टेकिंग ओवर आवर वेरी ओन AT&T स्टेडियम. और बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो माइकल, माय गुडनेस, व्हाट ए मूवी इट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन. अगेन, आप माइकल जैक्सन के फैन हो ना हो, आपने माइकल जैक्सन के गाने उतने फॉलो किए हो या नहीं हो, ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी बायोपिक है विच इज गोइंग टू मेक यू स्माइल व्हेन यू कम आउट ऑफ द थिएटर. एंड जफार, माय गुडनेस, जफार जैक्सन, माइकल जैक्सन्स नेफ्यू, ही हैज आउटडन हिमसेल्फ. 2 साल की ट्रेनिंग, जो उन्होंने विगरस ट्रेनिंग ली, ही टोटली लॉस्ट हिमसेल्फ इन द कैरेक्टर. ही लुक्स एब्सोल्यूटली लाइक माइकल जैक्सन. हिज बिहेवियर, हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज डांस मूव्स, एवरीथिंग, हिज किल्ड इट लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर आपने नहीं देखी है, आप जरूर देखो. और मेरे रिव्यू से क्या होगा, क्योंकि दुनिया भर में रिव्यूज जो हैं आप पढ़ ही रहे होंगे अबाउट दिस film being excellent. So this excellent film had this one song which I had never heard, and it's called ABC, and this is with Jackson 5, which means Michael Jackson performed with his brothers. Aur wo gana main lekar aana chahti hu. Shobha, this is very specially going out to your friend Sanvi, this dedication from Shobha, because it is her happy birthday. Let's make her a little more happy, because she's a huge fan of Michael Jackson, ladies and gentlemen, and to everybody else who enjoy Michael Jackson.

0: Travis, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar. Enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205 in Frisco. Lunoxy Medical. Modern care, warm experience.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: भूख लगी है या बस कुछ exceptional खाना
7: Street style chaats, rich Awadhi flavors, and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
6: A quick

0: Awadhi flavors and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ye sirf khana nahi hai. It's what your mood is actually craving.
1: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
2: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता.
1: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स.
2: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
1: देन डोंट ट्राई अलोन. एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट.
3: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स. रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org. पॉज द नॉइज, meet yourself.
4: Tracks that put you on the right track.

कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, और ये यादों की अलमारी जो मैंने खोली आप लोगों के लिए, होपफुली आपकी भी कुछ ऐसी अच्छी अच्छी यादें इन गानों के साथ निकल आती हों. यार कुछ कुछ गाने ना, दे फील सो गुड कि इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू, द फील गुड सॉन्ग्स दैट वी कॉल, राइट. एक फील गुड न्यूज फॉर ऑल यू लिसनर्स, आपके लिए अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, या आपके अपनों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, तो ये जो प्लेनों में जितने भी मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए वेरी स्पेशल न्यूज. All of you, Plano residents are absolutely loving the city's brand new on-demand transportation service, and the response has been overwhelming. So listen to this. Sir, pehle hafte mein Plano rides ne 315 trips provide ki hain senior citizens ko, aur feedback bahut zabardast hai. Now this service is specifically designed for residents aged 65 and older to help them get around the city safely and conveniently. Agar aap 65 या ओल्डर हैं तो आप प्लेनों में भी में कहीं भी जा सकते हैं, यू नो, इवन विद इन ए 1.5 माइल बफर जोन आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, ऑल राइड्स आर कंप्लीटली फ्री राइट नाउ थ्रू June 4th. तो चाहे आप ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हो, या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हो, या लाइब्रेरी जाना हो, या कर्ब टू कर्ब सर्विस जो कि आपकी लाइफ बहुत बहुत आसान कर सकती है. एंड अकॉर्डिंग टू द सिटी, ओवर 770 पीपल हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द ऐप, एंड इट इज़ कॉल्ड प्लेनो राइड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड 98% ऑफ यूजर्स हैव गिवन इट ए परफेक्ट 5-star ratings. Plano rides weekdays पर सुबह 6:30 से रात के 10 बजे तक चलती है, और weekends के लिए कुछ मेरे ख्याल से special hours रखे गए हैं that you can check out. Even after the free period ends on June 4th, here is the thing, the fares will be super affordable still at just $1.50. पर राइड आप अपनी ट्रिप बहुत ही आसान कर सकते हो बाय सिंपली गोइंग टू द ऐप एंड बुकिंग इट. तो प्लेनो राइड्स ऐप के थ्रू आप यू नो एक सिंपल सा ये अपना जो है राइड बुक कर सकते हो, एंड यू कैन गेट दैट हेल्प. तो याद रखिएगा, स्टे मोबाइल, स्टे हैप्पी, एंड प्लेनो राइड्स इस बात के बारे में दूर दूर तक पहुँचाइए. ऑलराइट.

And you are tuned into Phanisha Radio 104.9 FM. It is always my pleasure to keep you all cheerful right here. क्योंकि गपशप गली जो मेरा शो है ना, इसका मकसद यही है कि आपके चेहरे पे स्माइल हो, आपके फ्राउन्स को मैं ना मतलब फ्लैटन आउट कर सकूं, आयन आउट कर सकूं, और बस कुछ लम्हों के लिए आप मस्त हो जाओ. Thank you, Sudha, for that sweet call which said exactly this.

0: ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले सेगमेंट में एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जहां पे हम आपसे दिल की बातें पूछेंगे, ना आपका नाम जानना चाहेंगे ना कुछ। ये वो जगह होगी जहां पर आप आके अपने डेली जीवन से कुछ टॉपिक्स उठा के हम बात करेंगे, जहां पर आप चाहे तो आके वेंट आउट कर सकते हो। सो बेसिकली विल कीप यू ऑल एनोनिमस, और जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो भी हम एनोनिमस रखना चाहते हैं क्योंकि हम कोई क्लेश नहीं चाहते। लेकिन ज़रूर जुड़े मेरे साथ 972-235-5555। इट इज़ कॉल्ड वेंटिंग मशीन, जो कि हम शुरू करने वाले हैं हर फ्राइडे को मेरे शो पर, जिसका नाम है गपशप गली। और दिस इज़ ऑल इन गुड फन, लाइट hearted a conversation aap logo ke saath. Keep listening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG FinTax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
7: चिकन बनाना
8: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Pritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
16: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
17: tracks that put you on the right track.

क्या है ना कि बॉस हमेशा इतने कूल और मस्त टाइप के नहीं होते, जो कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था इन द फिल्म बॉस. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम रियल लाइफ बॉसेस की बात करने वाले. दिस इज द वेंडिंग मशीन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑल ऑफ यू. देखिए, हम वेंडिंग मशीन भी हैं क्योंकि आप अपने रिक्वेस्ट भेजते हो एंड वी गिव यू योर रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स, हम वो सर्व करते हैं. और साथ में इस शो पे, दैट इज गपशप गली विथ मी टू, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वेंटिंग टी विथ टी, जो ये है विथ विच इज बेसिकली टी ऑफ टॉम कह सकते हैं. तो वेंटिंग मशीन होगा होगी वो जगह आप लोगों के लिए जहाँ पे आप वेंट आउट कर सकते हैं. दैट्स राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर अप योर माइंड बिफोर यू हिट दैट ब्यूटिफुल गॉर्जियस वीकेंड. तो हर फ्राइडे को एक ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे जिस पर हम चाहते हैं कि आप आए और बात करें, और हम ना आपका नाम डिस्क्लोज करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपना नाम डिस्क्लोज ना करें. हम चाहेंगे कि आप उन लोगों का नाम डिस्क्लोज ना करें जिनके बारे में आप वेंट आउट करने वाले हो. तो दिस इज द रिक्वेस्ट एंड द ओनली रूल टू फॉलो. बाकी आप आए ऑन एयर और अपना गम शेयर करें हमारे साथ. दिस इज ऑल इन लाइट हार्टेड फन दैट वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू. सो लेट्स बिगिन लेडीज एंड जेंटलमैन. इस गाने के बाद शुरुआत करेंगे, हमारे वो गम के क्षेत्र में ले जाएंगे जहां बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा होता है बॉस. बॉस से रिलेटेड वेंट आउट्स आपके लेने वाले हैं ऑन एयर. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

Yes, yes, yes. You are the best, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving us company right here on Fun Asia Radio 104.9 FM. जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है द विंटिंग मशीन. आई एम योर एग्नी आंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. कि जो भी दुख हो, यू नो, रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वील बी टॉकिंग अबाउट, लाइट फन में ये सारी बातचीत हमारी होने वाली है. आज हमने अपने फोन लाइन सारे ओपन कर दिए हैं आपके दिल और दिमाग को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री अमेजिंग वीकेंड एंजॉय कर पाए. सो वी ऑल नो द कॉर्पोरेट स्ट्रगल, राइट? कभी कभी बॉस का वो माइक्रो मैनेजमेंट इतना बढ़ जाता है कि ऐसा सच में नहीं लगता कई बार कि ब्रीदिंग स्केड्यूल भी आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा उनसे. या फिर वो क्लासिक उनके जो फ्राइडे शाम को, यू नो, ठीक आप जब जाने की तैयारी करने लगोगे तब उनका एक कॉल आएगा कि यू नो व्हाट, कैन यू क्विकली जंप इन टू दिस कॉल, लेट्स टॉक. एंड वो लगता है कि यार क्यों ही मैंने ये मैसेज देखा, सीरियसली द एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग हैपनिंग ऑन अ फ्राइडे, राइट? तो आज अपने सारे दुख हमारे सामने, सारे भड़ास हमारे सामने खोले. बट ये एक गुजारिश है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इस सेगमेंट का कि दिस इज ए 100% एनोनिमस जोन. यानी कि आप अपना नाम ना बताएं, अपने बॉस का नाम ना बताएं, अपने कंपनी का नाम ना बताएं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप किसी भी किस्म के प्रॉब्लम में पड़े. और इसीलिए विल कीप दिस एब्सोल्युटली एनोनिमस जोन एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू विन इन दिस वन विदाउट इवन टेलिंग योर नेम्स, क्योंकि मैं तो सारी डिटेल्स ऑफ एयर लेती हूँ, राइट? तो जरूर बने रहें मेरे साथ. लेट्स गेट ऑन दिस caller if they have a winning story to share with us. 972-235-5555 number in the studio. Yaar, kai logon ko bhadas nikalni, ye lights sare jal pade hain mere bilkul console ke. All right, you are live on air, tell me, what's your name? Okay, no name. Okay, kya hal chal hai aapke? Can you hear me? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कि आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक शायद कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुका है कि बॉस को लेके ऑलरेडी गालियां वालियां दे रहे होंगे. तो यस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे साथ, अपना फ्रस्ट्रेशन हवा में उड़ा दीजिए, हवा में आके, यानी कि ऑन एयर आके, यू नो. कुछ आपके क्रेडिट अगर किसी मीटिंग में उन्होंने आपसे ले लिया हो, यू नो, अगर यू नो एक बड़ा नेगेटिव सा माहौल बना के रखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखा है, तो ये वेंटिंग मशीन समझ लें आप ही के लिए है. कैन यू हियर मी? बिकॉज आई कैन सी समबडी ऑन एयर विद मी, बट आई कैन नॉट हियर यू. इफ़ यू कैन स्टिल हियर मी, गिव मी अ कॉल बैक, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. एंड लिसन, दिस इज ऑल इन प्योर फन दैट वी are going to do. This venting machine is open for all of you. Aditi, your request.

सो दिस इज वेंटिंग मशीन लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन गपशप गली विथ मी टू. जी हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ओपन कर सकूँ, बिकॉज आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम दिस एनोनिमस लिसनर ऑफ माइंड जो ऑन एयर नहीं जाना चाहते हैं, कभी भी नहीं जाना चाहते हैं. उन्होंने वो रूल जो है इस सेगमेंट का बिल्कुल फॉलो किया है कि एनोनिमस रखना है अपने आप को, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यू टू गेट इन ट्रबल, बिकॉज दिस इज द सेगमेंट वेर यू कैन वेंट आउट लेडीज एंड जेंटलमैन. और हम देसीज का थोड़ा सा है चक्कर कि हम ना जल्दी से वेंट आउट नहीं करते, हम अंदर ही अंदर अपने ग्रुप्स में बात कर लेंगे या हम थोड़ा सा खुन्नस खा के बैठ जाते हैं एंड दैट्स ऑल इट इज टू आर यू नो भड़ास स्टोरीज. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भड़ास निकालें और ऑन एयर आके निकालें. इट हैज टू बी एन आइस ब्रेकर बाय समवन हु वांट्स टू गो ऑन एयर. एंड उसके बाद आई एम श्योर काफी लोग कॉल करेंगे मुझे, क्योंकि ये है वो सेगमेंट जहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने अगर बॉस से परेशान हो तो जरूर आओ ऑन एयर. उनका नाम मत दो, कंपनी का नाम मत दो, अपना नाम मत दो, और बस आओ और बताओ हमें कि क्या क्या दुख है आपको अपने बॉस को लेकर. इट कैन बी ए लाइट हार्टेड थिंग, इट कैन बी ए सीरियस थिंग ऑल्सो. इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू लेडीज एंड जेंटलमैन. लेट्स ओपन अप द चैनल जहां पर और खुल के हम बात कर सकते हैं. 9722355555. पता है कुछ कॉल्स आए और कुछ कॉल्स फिर ड्रॉप हो गए, और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने में लोग शायद हेजिटेट हो रहे हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि हमारे एनोनिमस कॉलर की तरह आपके भी बॉस बहुत अच्छे हैं और आपको कोई गिला शिकवा नहीं है उनके अगेंस्ट. और अगर ऐसा है तो फिर तो भाई ओले ओले.

हर फ्राइडे को इस वक्त मैं लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए वो टॉपिक जहां पर आप वेंट आउट कर सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे खुलेगी मेरी जनता मुझसे एंड मुझसे बात करेगी आके ऑन एयर, बिकॉज दिस विल बी एन एब्सोल्युटली एनोनिमस जोन। हमें आपका नाम नहीं जानना, हमें आपके जिसके बारे में बात करेंगे आप उनका नाम नहीं जानना है। आपकी ज़िंदगी के कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे, हमारी ज़िंदगी के कुछ कुछ टॉपिक्स लेकर आएंगे और बात करेंगे हम। सी, मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भाई बॉस के बारे में ना एक अच्छी सी पोएट्री बनाओ, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का बॉस को लेकर है। तो एक बड़ा अच्छा सा पोएम लिखा है विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहले ये गाना हो जाए, फिर एक ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर बताते हैं। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: 104.9 FM Fun Asia Radio Fun Asia
1: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस, ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क, ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न, या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर।
2: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
3: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get coated. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: I'm Rahat Fateh Ali Khan. And you are listening to Radio Fun Asia.
18: Tracks that put you on the right track.

यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और ये है गपशप गली विथ मी टू। और इस गली को जो हमने आज ही खोला है आपके लिए, और ये गली है जहां पर आप वेंट आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी पिक अप। ऑलराइट, और हमारी टॉपिक इस आज के दिन की है बॉस। बॉस वो है जो लोगों ने कहा है कि भाई वो यू नो क्लाउड्स की तरह होते हैं, वो काले क्लाउड्स की तरह जो कि एक खूबसूरत दिन में गायब हो जाते हैं। जी हाँ, मैंने चैट जीपीटी से पूछा यार कि कुछ अच्छा सा पोइट्री बनाओ यार, हम इतनी ज़्यादा हम बॉसेस की क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। सी देर आर गुड बॉसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम एट ऑल, लेकिन होते हैं कुछ ऐसे ना सर फिरे खुन्नस खाए हुए नेगेटिव वाइब्स वाले बॉस होते हैं जो हमारे ना जीवन को परेशान करके रखते हैं, हमारी लाइफ को हेल बना के रखते हैं। बस उन्हीं के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं हम यहाँ पर, बिकॉज दिस इज द वेंटिंग मशीन सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आप वेंट आउट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है बॉस, जिस पे हमने एक कविता लिखवाई है चैट जीपीटी से। आफ्टर ऑल वी आर देयर बॉस, आंट वी। Coming up for you. In the meantime, if you have something to talk about in this anonymous zone that we are in, जहाँ पर आप अपना नाम नहीं बताते हैं, आप अपने बॉस का नाम नहीं बताते हैं, आप अपनी कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, लेकिन वेंट आउट आराम से कर सकते हैं, 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो।

इफ यू लव योर बॉस तो फिर ये सेगमेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वेंट आउट करना चाहते हो, अपने बॉस के बारे में कुछ बताना चाहते हो ऑन एयर आके बिंदास, तो ये वो एनोनिमस जोन है जहां आप अपना नाम नहीं बताते, आप अपने बॉस का नाम नहीं बताते, आप अपनी कंपनी का नाम नहीं बताते, लेकिन वो भड़ास पूरी खाली करके जाते हैं और वीकेंड की शुरुआत बहुत

0: तो ये वो एनोनिमस जोन है जहां आप अपना नाम नहीं बताते, आप अपने बॉस का नाम नहीं बताते, आप अपने कंपनी का नाम नहीं बताते, लेकिन वो भड़ास पूरी खाली करके जाते हैं और वीकेंड की शुरुआत बहुत बिंदास करते हैं। यू आर लाइव ऑन एयर और आपका नाम नहीं पूछने वाली हूँ, आपका आपकी भड़ास के बारे में बात करना चाहती हूँ। व्हाट इज योर बॉसेस प्रॉब्लम दैट यू हैव?
1: भड़ास से तो कुछ होता नहीं है, पर कोई कोई बहुत वियर्ड बॉस होते हैं,
0: हाँ,
1: जिनको खुद को नहीं मालूम होता है कि खुद को क्या करना है,
0: हाँ,
1: और उनको अपने एम्प्लॉय से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो कैसा भी करके लाइक बाय हुक और बाय क्रूक लाइक यू नो स्मॉल स्मॉल बात पे नैग नैग नैग नैग फॉर नो रीजन, कुछ खाई ले नैग करने के लिए, और मन में आए तो एकदम सीधे हो जाओ, मन में आए तो एकदम से
0: कुछ
1: रूड बन जाओ, लाइक
0: yes,
1: those are the most irritating bosses, like you know, and just especially जो खुद employ होते हैं और employ होते हैं जो boss हो जाते हैं,
0: हाँ,
1: and they don't know how to handle it.
0: How to navigate their path or their team's path. ये बड़ा दिक्कत, बड़ी दिक्कत होती है कि उन्हें जगह क्लैरिटी नहीं होना कि क्या करना है, अगर बॉस को नहीं पता तो फिर पूरी टीम एक थोड़े लॉस में रहती है, राइट? थैंक यू, थैंक यू,
1: करेक्ट,
0: हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एंड थैंक यू फॉर वेंटिंग आउट, थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दैट आइस। आई होप पीपल कम ऑन एयर और अपना ऐसे भड़ास निकाल दे।
1: एयर पे आना बहुत जरूरी है, बिकॉज भले हम अपना नाम नहीं बोलते, अपना कुछ बोलते नहीं, बन वॉइस तो समझ जाते हैं, अगर कोई सुन रहा है तो वॉइस से समझ जाएंगे,
0: हाँ, लेकिन आई कैन टेल कि भाई इतनी बिंदास है आप कि यू डोंट केयर, यू हैव दैट एटीट्यूड विद यू एंड कीप इट अप रियली।
1: मुझे अपने आप से मतलब और किसी से मतलब नहीं,
0: हाँ, मैंने ना
1: आई ऑलवेज से
0: हाँ बेस्ट वे टू गो। पता है मैं नीतू कपूर जो है ना, नीतू सिंह, उनका कल ही एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वो बोल रही थी कि कोई जब आके उनके पास किसी और की चुगली करते हैं तो वो कहती है भाई सान्नू की, और कोई उनके बारे में उनसे आके कुछ बुरी बात कहे तो वो कहती है भाई तैन्नू की। मतलब सिंपल सा एक फिलोसफी रखो, जियो और जीने दो, है ना? थैंक यू जी।
1: एक्चुअली कोई अपने आप के आपके बोलता है ना, सो यू शुड नॉट टेक इट माइंड, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर, यू ओनली हैव टू जज योरसेल्फ।
0: भाड़ में जाए यार, हमें अगर पता है कि हम काम सही तरीके से कर रहे हैं, हम 100% दे रहे हैं, तो किसी और के सुनने की हमें जरूरत नहीं है, नॉट इवन बॉसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल हियर, रियली रियली अप्रिशिएट। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू, दिस इज द वेंटिंग मशीन।

0: All right, this is the venting machine segment, जहाँ पर आप आके vent out कर सकते हैं on the topic that we are talking about. और हमारे topic है हमारे प्यारे boss. प्यारे जो bosses हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही, जो खड़ूस bosses हैं ना उनके बारे में particularly हम बात करना चाहते हैं. And this is going to stay a very anonymous zone, let me tell you all that. आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपके boss का नाम या जिसके बारे में भी बात हो रही होगी उनका नाम नहीं पूछा जाएगा इस segment में. और definitely steer away from doing it. It's a strict rule that we are going to maintain in this segment so that you don't get into any sort of trouble. This is all in light fun. Hum chahte hain ki aapka dimag jo hai na bilkul clean slate ki tarah ho jaye, and therefore you will be having a greater, grander weekend, and that is what the intention is here. You're live on air.
1: Hey, how are you?
0: Doing extremely well. Tell me what's up.
1: Yeah, you were asking that question, right?
0: Ji, boss.
1: बॉस या मैनेजर?
0: हाँ, मैनेजर भी बॉस ही है. हाँ बताएं.
1: या लाइक यू कैन बिकम अ मैनेजर और अ बॉस, बट आप अपना लीडरशिप स्किल नहीं ला सकते, राइट? दैट इज समथिंग विच यू शुड लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
0: ओके,
1: द प्रॉब्लम इज दैट वेरी फ्यू मैनेजर्स आर बॉस आर लीडर्स. ओके, सो लीडरशिप इज समथिंग, राइट? लाइक वेयर आई एम गोना फॉलो यू इवन दो आई हैव अ फ्रीडम टू नॉट टू फॉलो यू. अदरवाइज इट्स अ प्योर एग्जीक्यूशन ऑफ पावर.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
1: मोस्ट ऑफ द पीपल विच आर गिविंग यू द कॉल्स एंड ऑल, राइट? लाइक वो आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द बॉसेस आर यूजिंग
0: बिगेस्ट प्रॉब्लम. जब वो पावर आपके दिमाग में घुस जाए ना, तो आप फिर नहीं कर सकते हो काम. यू कैन नॉट डू इट फ्रॉम दैट स्पेस ऑफ माइंड.
1: सी, इफ यू आर अ गुड बॉस एंड इफ यू हैव अ गुड लीडरशिप स्किल, राइट? देन पीपल विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू.
0: या करेक्ट.
1: सो इट्स समथिंग बॉस शुड लर्न और द मैनेजर शुड लर्न, राइट? बट अगेन एज आई सेड, राइट, वेरी फ्यू पीपल
0: are good at it. Yeah.
1: Yes.
0: Yeah. No, you're absolutely right. So is your manager not a good leader, you think?
1: No, it's not about my manager or something. I'm overall my bold.
0: Overall, I'm bold.
1: Leaders,
0: got it.
1: They're calling themselves leaders, right? If you're asking them a question, they'll feel agitated, and then they will think, oh, you are asking this, disagreeing with them.
0: Yeah.
1: They will feel agitated. This is not how you should operate.
0: This is not how you should operate. And I'll tell you something, you know, I heard it from a friend, and I'm not going to share the friend's name or the boss's name. लेकिन उनकी बॉस जो थी ना, वो कुछ ऐसी थी कि जहाँ पर ना वो इंडियन थी. The problem becomes sometimes of that space also. जहाँ पे एक अगर इंडियन या देसी बॉस हो, let's put it like that, you know, देसी बॉस कई बार अपने देसी लोगों की काफी लेने लगते हैं, मतलब बैंड बजा के रख देते हैं, and they take it for granted. It sort of not a blanket, हाँ sorry, not a blanket statement here, but कुछ देसीज ऐसे होते हैं जो मतलब बैंड बजा के रख देते हैं अपने देसियों की.
1: आपका स्टेटमेंट काफी हद तक करेक्ट है. आई टोटली एग्री विथ यू, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट?
0: क्या है?
1: इट्स बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम व्हिच वी हैव इट बैक होम इन इंडिया.
0: ओके,
1: राइट? दोज आर वेरी ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, राइट? ब्रिटिश में जब वो लाए थे, दे वांट द क्लर्क, दे डोंट वांट द लीडर. तो हम लोग वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मैनेजर बन गए या डायरेक्टर बन गए या वीपी बन गए. वो बन तो गए, लेकिन हमारा माइंड सेट अभी भी वो क्लर्क वाला ही है. अभी भी वो क्लर्क वाला ही है. तो मैंने जैसे बोला था, राइट, लाइक माय डैड वाज इन आर्मी एंड आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट एंड दैट टॉट मी अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
0: ठीक है.
1: वो एक बार मैं मतलब ऐसे ही थे कि वो मतलब जा रहे थे, कोई कर्नल रैंक का ऑफिसर था, तो ही सैल्यूटेड हिम एंड एज़ सून एज़ ही आई वाज क्वाइट मींस अराउंड 13-14 इयर्स ओल्ड एंड मैं उनके बाइक में बैठा हुआ था, तो ही सैल्यूटेड हिम एंड देन आगे जाके वो ही स्टार्टेड कसिंग.
0: Oh,
1: and
0: achha,
1: there was, after some time, like I saw another captain rank guy was there, and then he was way younger than my dad.
0: Achha.
1: And he saluted him, and the way he greeted him and all those things, right? Hmm. Like, so, matlab, kafi achche se baat ki, even though that guy was way younger than the CEO.
0: Haanji. Hmm.
1: Then I came to know, because of that CEO's leadership skill, right? Like, something happened and all that, but this guy's leadership skill, like it saved someone's life. Okay, so that is something he told me, that the first salute which I gave and the dialogue which I gave you at the very beginning, right?
0: Yeah,
1: that the leader, if they are calling themselves is a leader, you are going to follow him no matter.
0: Correct.
1: They will give you the freedom not to follow them as well. Right, so that's what the dialogue my dad told me. एंड एज आई सेड राइट, लाइक ये काफी लंबा डिस्कशन हो सकता है, मोस्ट ऑफ द
0: डे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल right? मुझे एक लीडरशिप को लेकर ना ये भी प्रॉब्लम है, यानी कि बॉसेस के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जब वो फेयर गेम नहीं खेलते, यानी कि वो जो बायसेस लेकर आते हैं ना, या तो फेवरेटिज्म लेकर आते हैं ना, दैट अर्क्स मी आउट, दैट रियली इरिटेट्स मी अ होल लॉट. मतलब सबको आप पसंद करो नहीं करो, वो एक अपनी जगह पे अगर काम सही से हो रहा है तो आपका कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द स्पेस यू आर इन, राइट.
1: अगेन मतलब ये काफी पुराना चीज है, एजुकेशन सिस्टम एंड राइट एग्जीक्यूशन ऑफ पावर, मेनी थिंग्स आर
0: देयर.
1: इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू सी द गोरा बॉस राइट, नॉट लाइक दैट. इफ यू टेल देम दैट हे, मुझे
0: छुट्टी चाहिए कुछ, हाँ, दे एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट दैट, या एब्सोल्युटली, या नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात की. अगर मतलब एक्चुअली इसी बात पे मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल ही में हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में एक डिस्कशन चला था, जहाँ पे एक बंदा था, एक बॉस था, जिसने अपने जो उनके टीम के जो मेंबर थे, जब उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि क्यों, क्या, वाई, टुमारो ले लो, परसों ले लो, आज इतना काम है, आज मत जाओ. ये तो आप कर ही नहीं सकते हो यार, यू कैन नॉट डू दैट फॉर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो या, बॉसेस नीड टू नो दैट वो काम में लीड करने के लिए है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है उनकी कैपेसिटी. इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, यू नीड टू बी अ यू नो टीम मेट.
1: लीडरशिप स्किल सबके पास नहीं होता है. हम लोग मैनेजर बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, पर हम लोग वो लीडरशिप स्किल कभी वो नहीं डेवलप नहीं कर पाते. दैट्स द प्रॉब्लम राइट. हम देशियों में, मैं नहीं बोलूंगा जनरिक,
0: अगेन दिस इज करेक्ट.
1: आई एम प्रीटी हैप्पी विद माय बॉसेस एंड ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद
0: यू.
1: मेरा बॉस भी देसी है, इट्स नॉट लाइक दैट इज नॉट
0: बिल्कुल. और दूसरे को प्रॉब्लम में देखकर आप भी मतलब यू आर फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द बॉस दैट दे आर डीलिंग विद. सो ये जो सेंटिमेंट है, ये कई बार हम दूसरों के लिए भी शेयर कर रहे होते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, सारे देसी बॉसेस खराब नहीं होते हैं, सारे बॉसेस जो है इस कैटेगरी में नहीं आते. इट्स जस्ट a little small portion that actually is the trouble. Thank you so much for your call, really appreciate.
1: Thank you.
0: यहाँ पे हम आपके कॉल्स ले रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट बॉसेस. आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस निकालिए. We'll continue it till the end of my show. This is the segment, the venting machine, जहाँ पे जानना चाहते हैं हम आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस without naming anybody.

क्या करना है मैं बताती हूँ आप लोगों को। रवि इम्पोर्ट्स जाना है, अगर आप स्टोर ओनर हैं तो ये मैसेज समझें, इट्स वेरी स्पेशली गोइंग आउट टू यू। रवि समर किक ऑफ इज बैक और ये जो डेट्स हैं ये अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर लें। इट्स June 3rd एंड June 4th फ्रॉम 9 AM टू 5 PM एंड दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी बिगर, इट्स गोइंग टू बी बेटर विथ अ ग्रेट एक्सपीरियंस दैट यू गोइंग टू गेट एंटायर यू नो द क्रेजी डील्स दैट दे हैव ऑन मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं, फ्री गिफ्ट्स भी हैं पूरे दिन और आप वेंडर्स से मिल सकते हैं। यू कैन डिस्कवर बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप योर स्टॉक लाइक नेवर बिफोर रियली। और इसीलिए रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस जरूर जाए, विच इज ऑन 11029 हैरी हाइंस बुलेवार्ड बिल्डिंग ए इन डैलस। रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। All right, this is the vending machine segment that we have started. The vending machine segment, kya hai ye vending machine segment, jo har Friday ko main aap logon ke liye lekar aane wali hoon, jahan pe hum vent out karenge. Ji haan, kuch ek topic hoga aur us topic ke zariye hum kuch khul kar baat karenge. Na aapka naam janna hai, na us bande ka naam jiske baare mein aap vent out karne wale ho. So, aaj ka hamara topic hai boss. और क्या है ना कि बॉसेस के बारे में बात करना इट कैन बी अ बिट डॉन्टिंग, राइट। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपका नाम नहीं पूछ रहे हैं, आपके बॉस का नाम नहीं, आपके कंपनी का नाम नहीं, बस आए और बताएं बॉस की जो वो भड़ास है वो निकालें यहाँ पर, सो दैट योर वीकेंड इज गॉर्जियस ब्यूटिफुल एंड ग्रैंडर लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैंने कुछ काम दिया अपने अपने उस टीम को, बोलना चाहिए क्या, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने सोचा कि एक पोएम लिखने को कहती हूँ बॉस के बारे में, ठीक है, ऐसे खड़ूस ऐसे एटीट्यूड वाले बॉसेस के बारे में कुछ एक पोएम लिखने को बोलूँ। आफ्टर ऑल चैट जीपीटी की बॉस तो मैं हूँ और हम हैं, राइट। तो एक बड़ा अच्छा सा पोएम लिखा है, वही मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाने वाली हूँ। आर यू रेडी? ओके, हियर वी गो। फ्राइडे की शाम आई, नो जस्ट इमेजिन, रियली इमेजिन दिस, ओके। फ्राइडे की शाम आई, खुशियों का था खुमार, गौर फरमाइए, फ्राइडे की शाम आई, खुशियों का था खुमार, तभी स्क्रीन पे चमका बॉस का नया विचार। जस्ट वन क्विक थिंग बोल के थमा दिया लंबा टास्क, और मीटिंग में पूछते हैं व्हाई द सैड मास्क। सुबह सुबह आते हैं कॉफी का कप उठाए, व्हाट्स द अपडेट बोल के एवें चले जाते भी हैं, हर ईमेल में उनको सीसी करना है और ये है उनका अधिकार, एक बार रिप्लाई ऑल भूल जाओ तो मच जाता है हाहाकार। लेट्स सर्कल बैक सिनर्जी और थिंक आउटसाइड द बॉक्स, उनकी कॉर्पोरेट डिशनी सुन के दिमाग में लग गए हैं लॉक्स। मेहनत सारी हमारी होती है, प्रेजेंटेशन उनकी सचती है, और अप्रेजल के टाइम पर बजट की घंटी बजती है, और अप्रेजल के टाइम पर ये जो बजट की घंटी बजती है ना, उससे मेरी घंटी बजती है। पर चलो कोई बात नहीं, आपका वीकेंड अब करीब है, बॉस का नंबर म्यूट करना आज की सबसे बेस्ट तरकीब है, और ये आप कर सकते हैं बाय वेंटिंग आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द वेंटिंग सेगमेंट, और हर फ्राइडे को एक नया टॉपिक होगा और उस पर खुल के बात करेंगे। This is Funish Radio 104.9 FM, और ये है गपशप गली विथ मी टू।

इट वॉज फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे वेल विथ लेडीज एंड जेंटलमैन. ये वो फिल्म जिसमें रणबीर कपूर और साथ में अनुष्का शर्मा. एंड दिस फिल्म डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. अनुराग कश्यप की ये फिल्म वॉज ए जबरदस्त फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन इसके गाने ना मस्त है. गानों में थोड़ा सा वो जैज जो फील है हर गाने में कमाल है. एंड दैट्स अमित त्रिवेदी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट यू जस्ट हर्ड. एंड व्हाई डिड यू हियर इट? बिकॉज 15th of May, यानी कि आज ही के दिन ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे लगी थी, यानी कि थिएटर्स पे लगी थी. 2015 वॉज द ईयर, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो मैंने सोचा कि बनता है कि आपको इस फिल्म का गाना सुनाएं और बताएं कि देर इज अनदर सेलिब्रेशन विच इज ड्यू, एंड दैट सेलिब्रेशन इज टू डू विद माधुरी दीक्षित. यस, माधुरी दीक्षित्स बर्थडे. वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, आंट वी यार? कम ऑन, हम जितने भी माधुरी दीक्षित के फैंस हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि 15th में हम भूल जाएं कि इट इज हर 59th बर्थडे दैट शी इज सेलिब्रेटिंग. तो कैसे मिस कर सकते हैं यार. Wishing her a very happy, wonderful, amazing, बिल्कुल ठुमके वाला, झुमके वाला, कमाल का birthday.

लिसन, इट इज माधुरी दीक्षित्स 59th बर्थडे, तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भी एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाए आपको. दिस इज फ्रॉम नियॉन कैक्टस दैट यू कैन विन $20 का डिस्काउंट ऑन डाइन इन. तो एक किसी बंदे को मिलने वाला है या बंदी को मिलने वाला है, इफ यू कैन गेस द नेक्स्ट ट्रैक दैट आई एम प्लेइंग. थोड़ा सा म्यूजिक और आपको गेस करना है गाना. बहुत पॉपुलर गाना है, तो हाथ आपके फोन पे होना चाहिए और जल्दी से आपको डायल करना आना चाहिए. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. एंड नियॉन कैक्टस इज दैट प्लेस फॉर ऑल ऑफ यू जहां पर आपको मेक्सिकन खाना विद दैट गोल्डन ऑफकोर्स एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस दैट यू गोइंग टू गेट इन द फूड देयर. सो यस, गेट रेडी टू विन दैट लेडीज एंड जेंटलमैन राइट हियर ऑन फनीशर रेडियो 104.9 FM. एंड आई एम रेडी टू प्ले द म्यूजिक फॉर दिस नेक्स्ट ट्रैक, द प्रीलूड, एंड यू हैव टू गेस द सॉन्ग.

0: ऑन कैक्टस की तरफ से आपके लिए ये इनाम है, जल्दी से मुझे कॉल करें इन ऑर्डर टू टेल मी व्हाट दिस सॉन्ग इज एंड यू कैन विन फॉर योरसेल्फ $20 का गिव अवे. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हेलो,
0: हाय.
1: Hi, my name is Lisa and I want to answer for the song.
0: Yes, tell me Lisa, what song is it?
1: हमको आजकल है.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आपको थोड़ा सा गाने के लिए बोलने वाली हूँ. जस्ट फॉर माधुरी दीक्षित दो लाइन गा दीजिए.

0: the way she lights up the screen, may her life be as lighted as a beautiful smile, ladies and gentlemen. That's Madhuri Dixit we are talking about. To everybody celebrating their special day today, bahut sari badhaiyan aapko, bahut sari best wishes hamari taraf se aapko and to Madhuri Dixit as well. She's celebrating her 59th. To chaliye aage badhte hain aur ek aur Madhuri Dixit ka matlab bilkul tod phod gana sunwate hain. और ये सुनवाने के पहले ना मुझे आपसे कुछ पूछना है और मुझे आपसे ये पूछना है कि ये कौन सा गाना है जो मैं प्ले कर रही हूँ. अगर आप बता देते हैं तो आपके लिए है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. टेल मी द सॉन्ग. ये किस गाने का म्यूजिक प्ले हो रहा है बताएं. Funny Radio, you're live on air.
1: Hi.
0: Hi.
1: The song is मेरा पिया घर आया.
0: बिल्कुल गाने गाए बिना तो हम छोड़ते ही नहीं ना किसी को. गा के बताइए.
1: मेरा पिया घर आया ओ राम जी. मेरा पिया घर आया ओ राम जी.
0: Absolutely. Thank you very much. And what's your name?
1: शिवानी.
0: शिवानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल. तो ये रहा वो गाना और आपके लिए वो इनाम फ्रॉम $10 फन पिज़्ज़ा किचन फ्रॉम द फ्रिस्को लोकेशन. लेट मी टेक योर डिटेल्स ऑफ एयर.

0: I am going to leave you all with that song. Shivani ne jeeta is gaane ke liye Fun Pizza Kitchen se. And guess what? Shivani is up next, ladies and gentlemen, to entertain you all the way till 2:30. This is Me Too, signing off for the week.
1: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
2: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota, par जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
3: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
4: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
3: रोज का सेम प्रॉब्लम।
5: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
6: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
5: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
7: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas' number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो।
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
15: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल,
14: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
15: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

हर हर महादेव शंभू. वेलकम वेलकम वेलकम डैलस. इट इज 12:36 बाय माय स्टूडियो क्लॉक एंड आप जुड़ चुके हैं फन एशिया के साथ 104.6 एफएम एंड दिस इज आरजे शिवमी एंड द आफ्टरनून अड़ा. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस फ्राइडे आफ्टरनून. वीकेंड शुरू हो चुका है और उसका आगाज मैंने किया है, पर आज थोड़ी सी ना मैं साइडलाइन हो रही हूँ अपनी मस्ती मैजिक से. थोड़ी सी सीरियस वाली बातें भी करेंगे, ज्यादा सीरियस नहीं करेंगे. ज्यादा सीरियस मतलब कि आईसीयू में बैठना. हम बस इस कमरे में और आप गाड़ी में बैठ के थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस भी खेलेंगे, क्योंकि मुद्दे कुछ ऐसे उठाने हैं जिस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है. फिलहाल एक ना ताबड़तोड़ गाने से मैं इसकी शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सीरियसनेस हम ना मस्ती में भी बोल सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट यू नो गेटिंग द वर्ड आउट देयर एंड हाउ यू से इट इज एक्चुअली दैट्स व्हाट एक्चुअली मैटर्स. दिस इज आरजे शिवमी एट योर ओन आफ्टरनून अड्डा. एंड साड़ी गली आओ पहले, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है?

All right, Tasveer Ali Brothers. This is absolute. This one song is मतलब मेरी टॉप लिस्ट में आता है, ये फेवरेट्स के. 12:46 हो चुके हैं मेरी स्टूडियो क्लॉक पे, और इस समय आपको भाई शाइन ब्राइट करना है विद डायमंड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स डैलस ऑन प्रेस्टन रोड एंड इन फ्रिस्को. आई मीन इन फ्रिस्को. सो योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस एंड मोर देन स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. फॉर क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, देयर डायमंड कलेक्शन ब्लेंड्स सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइंस, परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेटिंग लव विद मी. आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड से, कुछ भी लेके. मैं बिल्कुल इस बात का बुरा नहीं मानती हूं. डाउनलोड कर लो इनकी मोबाइल ऐप अभी, एंड ऑफकोर्स शाम तक आप मुझे गिफ्ट कर पाओगे. अगला गाना सुनाती हूं और इसके बाद करूंगी आपसे गुफ्तगू. जो वो सीरियस वाली बातें करनी है ना मुझे आज, उसके लिए तो मैं ही बड़ी लुक फॉरवर्ड कर रही हूं. बट ऑफकोर्स आई एम गोना कीप इट लाइट, डोंट यू वरी, बिकॉज नथिंग इज सो सीरियस टू बी डिस्कस्ड सो सीरियसली. Right?

कभी कभी ऐसा होता है यार कि ना आपको ऐसे लगता है कि बहुत ही गुस्सा आ रहा है आपको कभी कभी, क्या हर एक घंटे में होता है कि बहुत गुस्सा आता है किसी सिचुएशन पे, और आपको लगता है कि ये सामने वाले की वजह से ट्रिगर हुआ है ये गुस्सा. मैंने आपको बोला था ना कुछ सीरियस बातें करेंगे, ये एक घंटा मैं डेडिकेट कर रही हूँ ऐसी फीलिंग्स को जो कई बारी ना हमें लगता है कि है, बट अगर हम थोड़ी इनर जर्नी करें ना अपने अंदर, वो हमारी सिर्फ एक ऊपरी तह की फीलिंग होती है, एंड देर इज नो रियल फीलिंग अटैच टू इट. व्हाट एम आई सेइंग, व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस, आई विल टेल यू. दिस इज आरजे शिवमी एंड यू लिसनिंग टू मी ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया. दिस इज योर आफ्टरनून अड्डा. आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आरजे शिवमी है मेरा इंस्टा हैंडल. मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार फलाने ने मेरे को बिट्रे कर दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसकी वजह से मेरा ये रिश्ता खराब हो गया है. किड्स आर नॉट लिसनिंग टू मी, दैट पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू मी, आर फ्रेंड्स आर बिट्रेइंग अस, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमसे कुछ तो अलग टाइप की एक कोई चीज़ चाह रहे हैं. बट अगर मैं आपको कहूं कि ये सारी फीलिंग्स हमारी अपनी क्रिएट हुई हुई है, और हम इस फीलिंग्स को सप्रेस करके, एक्चुअली सप्रेस नहीं, अगर हम थोड़ी इनर जर्नी करें और अपने बारे में कुछ कुछ चीजें जानने की कोशिश करें, तो हमें ये पता चलेगा कि ये सब कुछ हमारे अंदर बसा हुआ है. इस सिचुएशन, इन सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई हुई है, इस पे अगर हम खुद अंदरूनी तरह से कहते हैं ना उसको, शांत रह सकें या एक टाइप की पीस हम अटेन कर लें, तो ऐसे लगता है कि नहीं, दिस इज जस्ट रिफ्लेक्शन, दीज फीलिंग्स इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आर इनर सेल्फ, दैट वी आर इन अ कियोटिक मोड विद इन अस, एंड नथिंग, नो सिचुएशन इन द वर्ल्ड, नो पर्सन इन द वर्ल्ड, नो रिश्ता इन द वर्ल्ड विल बी अकॉर्डिंग टू आर माइंड सेट. आप ये समझ रहे हो, हमारे माइंड सेट से कोई नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से कोई नहीं चलेगा, हमारे कहने में कोई नहीं चलेगा, और हमसे हमारे हम जितना प्यार करते हैं किसी को, या हम जितनी नफरत कर सकते हैं, उतना अगर कोई हमें रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है, उतना प्यार भी और उतनी नफरत भी, तो सारी प्रॉब्लम्स ना हमारे अंदर हैं. हम अगर अपनी इनर इंजीनियरिंग को थोड़ा सा बढ़ा लें, कहने का मतलब है अपने अंदर की शांति को, पीस को, माइंडफुलनेस को बढ़ा लें, तो ये सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं, ये सारा का सारा कहते हैं ना केओस है, वो लगेगा कि दिस इज वेरी सरफेस लेवल एंड समथिंग विद इन अस इज नॉट ओके. वी नीड टू फिक्स आर ओन फीलिंग्स, आर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एंड नो वन एल्स इज फिक्सेबल इन दिस वर्ल्ड. कहने का मेरा मतलब, अगर आज मेरी डैलिस की जनता समझ रही है और मुझे सुन रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो एंड वी कैन टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट. 9722355555 इज द स्टूडियो का नंबर, एंड ब्रेकिंग न्यूज इज नाउ ऑन पेज 3. डैलिस का एक नया फ्लेवर है भाई, हब 121 पे पेज 3 ईटरी के बारे में बात कर रही हूँ मैं. वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर, कबाब्स, चाट्स, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स, वाइब्रेंट वाइब है इनके पास. ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, परफेक्ट है फूडीज के लिए, डेट्स के लिए एंड फ्लेवर चीजेस के लिए. वी विजिट पेज 3 eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स. शेर शाह से है ये गाना, और अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, यानी कि इनर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन टॉक. ऑफकोर्स कॉल को एयर नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ मुझसे बात करेंगे.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
11: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
10: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
12: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
13: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. याद है आपको जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे? मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी. अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास. बसंत मेला 31 मई, हैगड़ पार्क, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक. अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग. मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर. स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरीज के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us.

Welcome back, ladies and gentlemen. This is RJ Shivmi on your afternoon adda. And today's topic is serious but not so serious, as well as inner engineering. क्या बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा आपको इफेक्ट करती है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? भाई, मुझे गुस्सा बहुत जोर से आता है, फिर उतनी ही जोर से ना मैं शांत हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को मैंने इतनी एनर्जी और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही क्यों दी कि मुझे इन द फर्स्ट प्लेस ही इमोशन फील हो. एंगर इज जस्ट एन इमोशन एंड नॉट देयर टू बी प्रेजेंट, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे या फिर अ फ्यू डेज. डोंट यू फील? आई फील सो, एंड इफ यू फील सो टू, 9722355555 स्टूडियो का नंबर. लेट्स टॉक इट आउट. थेरेपी कैन बी डन हियर एंड रेडियो एज वेल विद मी, आरजे शिव मी.

आंखों से मजाल मेरे तो नहीं हुई है भाई, मैं करना तो चाह रही थी आंखों से मजाल, फिर ना मैं ऐसे पिघल जाती हूँ कि रहने ही दोगे, फिर ना ऐसे लगता है कि बस सामने वाले को मोहब्बत हो गई मुझसे, फिर अब जैसे आप लोगों को हो ही गई है मुझसे मोहब्बत, तो ऐसे ना फिर ऐसे होता है कि आंखों से मजाल थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए. ठीक है, वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं, इसके बोल क्या आदमी है यार, हिज राइटिंग आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव. अच्छा जी, बैक होम इंडिया कितना कुछ चल रहा है, नहीं सात कुछ तो रूल हमारे प्यारे से मोदी जी ने बोला है, जो ऑलरेडी गरीब लोग बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी और जूझ रहे हैं उनको बोल दिया गया है कि तेल भी कम खाओ, सोना भी मत खरीदो, जैसे कि हर पांचवें दिन हमारी एक जो स्थिर जनता है ना, मतलब स्थिर जनता जो है पॉपुलेशन, अब जैसे वो हर पांचवें दिन गोल्ड ही खरीदने जा रही थी जैसे कि मैं भी. तो मोदी जी ने कितने कुछ वादे करे थे पिछले 14 साल में, और अब वो लग रहा है कि ये सरकार ठीक है और क्वेश्चंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए इसके खिलाफ. खैर, देर आर यू नो पीपल हु आर ट्राइंग देर बेस्ट टू ब्रिंग आउट यू नो सच्चाई, जस्ट लाइक हियर हैपनिंग ऑन दिस सॉइल एज वेल, बट अभी देर इज लॉन्ग स्टोरी. आई होप द इकॉनमी फील्स बेटर, द इकॉनमी इज एबल टू ब्रीद, और इकॉनमी हम पे गुस्सा ना करे, चाहे वो यहाँ की हो चाहे बैक होम इन इंडिया हो, बस वो हमसे गुस्सा ना हो और हम सिर्फ अच्छे अच्छे तरीके से ना खेल लें और जी लें और हंस खेल लें. मेरे कहने का मतलब आप समझ ही रहे हो. दिस इज आरजे शिव मी ऑन 104.9 FM. अच्छा यार, मैं आपको बताऊं पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन देनी है मेरे को आपको सीमा मेहता ऑफिस के बारे में. इफ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US permanent residency, the law offices of Seema Mehta can help you. Attorney Seema Mehta and her experienced team specializes exclusively in immigration law, including EB-5, investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. For more information on EB-5 investor visa program, of course, you can email info@seemamehtalawfirm.com. That is info@seemamehtalawfirm.com. This is your afternoon Adra, your show with me, RJ Shivmi. Follow me on Insta, RJ Shivmi is my Insta handle. वहां पे ना मैं ठीक ठाक बातें कर लेती हूँ, यहाँ पे तो मैं बहुत ही हसीन बातें करती हूँ, तो फिलहाल आप मुझे यहाँ सुन लो, शाम तक इंस्टा फॉलो कर लेना.

यार एक गिव अवे खेलने का मेरा मन कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना इतनी सीरियस बातें करूँ और मैं कुछ आपको प्रसाद नहीं दूँ, यानी कि गिव अवे नहीं दूँ, तो ऐसे मुझे लगेगा कि मेरे लिसनर्स बोर हो रहे हैं। लिसनर्स जागो जागो, ग्राहक जागो। देसी मंडी का मेरे पास एक बड़ा ही प्यारा सा गिव अवे है। सो योर चांस टू विन अ ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन DFW। यू ऑल यू नीड टू डू इज आंसर द सिंपल क्वेश्चन। जो ये गाना चल रहा था अभी, आपको पता ही है कि ये जैस्मिन सैंडल्स का आवाज इतनी ज्यादा जोर शोर से गूंज रही है जैस्मिन सैंडलेस की कि अब पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। आर्टिस्ट बीट एनी आर्टिस्ट, ठीक है, आर्ट और आर्टिस्ट का मुझे लगता है 2026 जो है वो साल है। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, बी इट गायिका, गायक, कॉमेडी, एनीथिंग, मेरा भी ये साल मुझे लग रहा है मैं आर्टिस्ट को देना चाहती हूँ। कई साल होते हैं ना, दिस ईयर्स टीचर्स की बहुत जय जयकार हो रही है, इस साल मुझे लगता है सारे आर्टिस्ट जो हैं, स्पेशली द वंस दैट आर वर्किंग हार्ड एंड बीन इन द गेम एंड नो कि यू नो हाउ दे हैव कम टू दिस प्लेटफॉर्म, दैट दे हैव रीच्ड दैट प्लेटफॉर्म, उन लोगों की तो सल्यूट है उन लोगों को। अब हम पहुंचते हैं इस गिव अवे पे। तो ये बताओ, ये जो जैस्मिन सैंडलेस है, इनको ना कुछ और भी लोग बड़े प्यार से कहते हैं, वो उनका नाम क्या है? आपको बस मुझे इतना ही बताना है। 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर। दिस इज RJ शिवमी।

चालीस वालों गहरा होता जा रहा है भाई। ये बताना था आपको मेरे को कि ये जो जैस्मिन सैंडलेस हैं, इनको एक और प्यारे से नाम से बुलाया जाता है। वो प्यारा सा नाम क्या है? कॉल्स तो मेरे पास बहुत सारी आ रही हैं, कुछ कुछ गलत भी आ रही हैं, बट मैं फिर भी आपको टाइम देना चाहती हूँ। तो भाई कॉल, फोन उठाओ मतलब, और मुझे कॉल कर लो 9722355555 पे। दिस इज आरजे शिमी ऑन 104.9 FM।

All right, thank you so much for your calls. And Shweta, my lovely friend, you are my winner. Yes, Jasmine Sandless ko jo hai Gulabi Queen bhi bola jata hai. Thank you everybody for your call. Ryan from Frisco. Pritam from Frisco. प्रीतम आपका नाम तो बड़ा ही अच्छा है. जया फ्रॉम प्लेनो एंड हितेश फ्रॉम फोर्टवर्थ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. यस, गुलाबी क्वीन जैस्मिन सैंडलेस का नाम.

0: भाई, इनर इंजीनियरिंग की मैं बात कर रही हूँ पिछले कुछ समय से, कि कई चीज़ों का ना हम पे इफ़ेक्ट होता है, एंड हम हाफ हाफ क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे होते हैं. यानी कि किसी के एक्शंस होते हैं और हमारे उसके बाद एक्शंस आते हैं. और अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ये सभी काम, मतलब ये सारे रिएक्शंस जो हैं, एक सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से यू कैन ब्रिंग दीज रिएक्शंस डाउन एंड स्टार्ट सोकिंग इन टू द गुड ऑफ द वर्ल्ड एंड पुट योर एनर्जी टू द गुड यू नो ऑफ द वर्ल्ड, हाउ इज दैट? मैं एक खुद इस मुहिम पर हूँ कि भाई, मैं चाह रही हूँ कि मेरे रिएक्शंस जो हैं वो कम होने लग जाएं और मेरे एक्शंस यू नो ज़्यादा, दे स्पीक लाउडर देन माय ओन एग्जिस्टेंस. यानी कि मैं अपने आप पे ऐसे काम करूँ टू द पॉजिटिव माइंड, टूवर्ड्स द पॉजिटिव माइंडसेट एंड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, कि मेरे को दुनिया के एक्शन से फर्क पड़ना बंद हो जाए एंड मेरी मेहनत और यू नो मेरा काम सर चढ़ के बोले एंड मैं बस उसमें समर्ज हो जाऊं, कि मुझे लोग इफेक्ट करना बंद कर दें और मैं जो हूं वो इतनी पीस सिचुएशन में आ जाऊं कि बस उसी खुशबू में खो जाऊं.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
4: That is, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205. In Frisco, Lunoxy Medical, modern care, warm experience.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, क्रिस्पी, परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: भाई दादी की शादी से लिया गया है ये गाना। कपिल शर्मा दिख रहे हैं इसमें मेरे को, भाई नीतू कपूर दिख रही है मुझे इसमें, रिदम उनकी बेटी कपूर दिख रही है मेरे को। तो मतलब स्टार कास्ट तो ठीक ठाक से है। देर वॉज दिस टाइम वेयर यू नो ऋषि कपूर एंड द कपूर खानदान डिडंट वॉन्ट देयर वुमेन यू नो इन द मूवीज, बट देन स्पेसिफिकली ऋषि कपूर बेटी। अब जब पापा कपूर नहीं है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक नीतू कपूर ने इस बात को ओके कर दिया दैट शी कुड डू अ लिटल बिट ऑफ बॉलीवुड मूवीज या थोड़ा काम कर सकती हैं वो। ये एक अपने आप में एक पूरा का पूरा सेगमेंट हो सकता है मेरे लिए, मैं इस पे बात कर सकती हूँ। बट देन मेरे को यहाँ गाने प्ले करने हैं और भी गाने प्ले करने हैं सो दैट आई कीप यू एंटरटेन्ड एंड आई कीप यू फ्राइड ये वाले मूड में। दिस इज आरजे शिव मी एंड यू लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया नेटवर्क। अच्छा जी, गाने तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं और ऑफ कोर्स मेरे पास गिव अवे भी हैं भाई इस आवर में एक, और तो रेडी हो जाओ डैलस वालों, एक गिव अवे और आ रहा है।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

Welcome back, ladies and gentlemen. This is RJ Shivmi on 104.9 FM Phanisha Radio पे आप मुझे सुन रहे हैं. अच्छा यार, एक बड़ा हसीन सा थॉट आया है. अगर आपको कहीं पहुंचना है लाइफ में, ठीक है, यू हैव अ गोल इन लाइफ एंड यू आर सो फोकस्ड इन यू नो विद दैट गोल, यू नो कि अब मुझे ना कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रूक आई नीड टू रीच देयर. फॉर दैट आप कई चीज़ें आपको ना अपने माइंडसेट से हटानी पड़ती है. यू नो द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ कि भाई लोग क्या कहेंगे वाला फेलियर, मतलब दैट फियर कि ये ठीक है कि नहीं है वाला फियर, ये हम सही कह रहे हैं कि नहीं वो वाला फियर, ऐसे सारे फियर हटा के मुझे लगता है उर्वशी राउटेला बनी है. ये बंदी जो है कहीं तो डिलुलू वर्ल्ड में रह रही है, कुछ भी आके बोलती है, चाहे वो लियोनार्डो डी कैप्रियो हो, चाहे वो लियोनार्डो डी कैप्रियो से मिलना हो, एक कहीं ये पहुंचना चाह रही है. मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कहाँ. मे बी यू नो आर्मिटस 3 पे ये बैठ के जाएं, चांद पे या फिर मार्स पे, जहाँ पे भी इलॉन मस्क इनको लेके जाना चाहता है. तो मैं जो हूं ना, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, मे भी आपको थोड़ा तो डिल्यूजनल होना पड़ता है टू रीच अ सर्टेन गोल इन लाइफ. नहीं, ऐसी तो नहीं आप बन जाओगे बेबी डॉल में सोने की, डोंट यू थिंक? ऐसे ही मेरे को थॉट आते रहते हैं और ऐसे ही थॉट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. आरजे शिवमी है मेरा इंस्टा हैंडल. फिलहाल मैं आपको बताती चलूं कि भाई कनेक्टिंग अमेरिका, एक बड़ी ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाली हूं. विथ कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू ए यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइंड टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345. It is 321-888-7345. Or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. फिलहाल अगर आपको नहीं लग रहा है कि उर्वशी रौटाला बेबी डॉल सोने की हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या बोलती हैं? ये मेरे को कोई डीकोड कर दे. एआई भी डीकोड करना बंद कर दिया है. मेरे फोन वाले में जो एआई है, उन्होंने उर्वशी रौटाला को मेरे लिए डीकोड करना बंद कर दिया है.

तू झूठी मैं मकार, इस मूवी में थे ना बस्सी, या फिर इस मूवी में थे आई थिंक हर्ष गुजराल, मैं भूल गई हूँ. अगर आपको जानकारी है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो 9722355555. एंड द नेक्स्ट टॉक आई नेक्स्ट टॉक नेक्स्ट ट्रैक आई हैव फॉर यू, दिस इज मतलब ये मेरे प्लेलिस्ट में ऊपर वाले नंबर पे आ रहा है यार आजकल.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
6: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
7: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
6: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
9: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
9: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
10: Dude, life mein kuch aisa karna hai, jisme main front page pe rahun.
11: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
10: Kaise?
11: Page 3 eatery?
10: No, not another restaurant again.
11: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
10: Matlab great food, great drinks, and great company. Yani ki main.
12: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
5: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
6: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
5: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
6: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
13: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रीकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshoyuniversal.org। पॉज द नॉइज, मीट treat yourself.

104.9 FM पे आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे शिवमी को. कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बता देती हूँ यार. मैं ऑफकोर्स गॉसिप तो करती हूँ और हर कंट्रोवर्सी को 10x करके बताती हूँ, तो उसके लिए काफी नून हूँ. अगर आप अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो फिलहाल मैं आपको बताती चलूँ लनक्सी मेडिकल के बारे में. डैलस, व्हाट इफ गोइंग टू अ क्लिनिक एक्चुअली फेल्ट एंजॉयबल. ऑन मे 16 स्टेप इनटू अ होल न्यू हेल्थ केयर एक्सपीरियंस एट लनक्सी मेडिकल टेक्सास प्राइमरी एंड अर्जेंट केयर्स. ग्रैंड रिबन कटिंग फ्रॉम 2 PM टू 4 PM इन फ्रिस्को. सिप फ्रॉम अ कस्टम लेट लाटे बार. Enjoy nothing abundant cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting med spa prizes. Visit Lanuxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205 in Frisco.

ऑल राइट, मैं बात कर रही हूँ कि भाई उर्वशी राठौला जो इस डुलुलु वर्ल्ड में जी रही हैं, क्या राखी सावंत मतलब उस डुलुलु वर्ल्ड की क्वीन है? मतलब दोनों का जो सिर और पैर है ना बातों का, मेरे को तो पता नहीं चलता कि किस तरफ से ये उठी हैं और किस तरफ सोती हैं। मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर आप समझ पाते हो इनकी कुछ बातें, राखी सावंत या फिर उर्वशी राठौला की, तो मुझे बताओ कॉल करके कि इनके साथ हिसाब किताब मैं कैसे बिठाऊं। मैं समझने की कोशिश पूरी रहती है भाइयों बहनों मेरी, और बट नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा, ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा। फिलहाल चलो एक गिव अवे खेलते हैं। अगर मेरी डैलस की जनता जाग रही है तो फिर बता दो कि आप जाग रहे हो गिव अवे खेल के मेरे साथ। सो इफ यू लव सॉकर, देर इज समथिंग एक्साइटिंग जस्ट फॉर यू। मिकिनी चुपाचाब्राज FC is kicking off their home opener this May 16th. And guess what? Page 3 E3, along with Fun Asia Radio, is giving you a chance to be there live. We are giving away 2 free tickets to the lucky winners. So if you plan, so you and your plus ones can enjoy an action-packed game right here in DFW. Stay tuned. Answer simple question. Bahut hi fun hone wala hai. Page 3 E3, Fun Asia, bringing the game closer to you. To bhai, ready ho jao. Filhal, main aapko bata dun. कहाँ पे आना है आपको? 9722355555। द गाना इज एथेया, यानी कि आपको भी एथे ही आना पड़ेगा। इस गिव अवे के साथ खेलने का मौका है। इस गिव अवे को जीतने का ये आपके पास एक मौका है। ओफ, क्या हो रहा है आज शिवानी?

अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, नेम एनी टू ऑफ इंडियाज फर्स्ट थ्री सुपर मॉडल्स फ्रॉम द अर्ली 90s, वन ऑफ हूम लेटर मैरिड अ बॉलीवुड स्टार शी हैड डिस्कवर्ड. हिंट है, वन ऑफ देम वॉज ऑल्सो मिस इंडिया 1986. अगर आप जानते हैं तो भाई बता दो, हिंट मैं और भी दूंगी अगर आपको इसका जवाब नहीं आएगा तो. बट कॉल करो 972-235-5555.

0: कथिया।
1: ये वक्त हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था और हम शायद पहले ऐसे इंडियन थे जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन उसकी अपनी माँ ने दी थी और हमारी देखा देखी छोटे ने भी लव मैरिज कर ली।

भाई मैं ढूंढ रही हूँ आंसर, अगर कॉल कर रहे हो तो करते रहो. 9722355 नेम एनी ऑफ द टू, नहीं नहीं एनी ऑफ द टू नहीं, एनी टू ऑफ इंडियाज फर्स्ट थ्री सुपर मॉडल्स फ्रॉम द 90s, वन ऑफ होम लेटर मैरिड अ बॉलीवुड स्टार. शी हैड डिस्कवर्ड, हिंट मैं दे चुकी हूँ कि चलो 90, द ओरिजिनल 90s सुपर मॉडल स्क्वाड, यू नो हु वाज योर स्टाइल आइकॉन ग्रोइंग अप, तो ये भी बता देती हूँ. 9722355555, तो बताओ 80s 90s इंडियाज, खेलो यार थोड़ा सा, जागो ग्राहक जागो, आई मीन जागो लिसनर जागो.

Alright, I have the right answer. Actually, Shrisha from Frisco. भाई आपने दिया है सही जवाब. इसका आंसर है मेहर जैसिया, मिस इंडिया 1986, मैरिड टू अर्जुन रामपाल, मधु सापरे एंड मिलन सोमन. मतलब ऑल थ्री अपीयर्ड इन द आइकॉनिक 1995 का टफ शूज. तो मतलब द ओरिजिनल 90s का सुपर मॉडल में आती थी ये. तो फिर याद है आपको हु वाज योर स्टाइल आइकन ग्रोइंग अप? इसमें से याद आ गया मैं क्या बात कर रही हूँ. मुझे लग रहा है मैं बहुत छोटी थी तब, बहुत छोटी. मतलब मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कितनी छोटी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत छोटी थी तब. बट येस, आई लव द आंसर्स दैट हैव पोर्ड इन, एंड श्रीशा फ्रॉम फ्रिस्को इज माय विनर. क्योंकि हम बात कर रहे थे, इन्होंने बोला हम बात कर रहे हैं फ्रिस्को से. मैंने बोला कितने सारे का बात कर रहे हो, सभी फ्रिस्को से बात कर रहे हो? तो उसने बोला नहीं, मैं अकेली हूँ फ्रिस्को से. बट थैंक यू, मैं तो ए वही लुट गया. इज माई नेक्स्ट सॉन्ग.

ऐसा है, वक्त हो चुका है मेरे जाने का और किरण जी के आने का। आई होप फ्राइडे को मिलूंगी यार मैं अगले, पता है पूरा हफ्ता लगता है मुझे यहाँ तक पहुँचने पे, फनीशिया पहुँचने में। इतनी दूर रहती हूँ मैं कि मुझे एक हफ्ते बाद मौका मिलता है यहाँ आने का। बट आई एब्सोल्युटली लव इंटरेक्टिंग विद यू ऑल एंड आई एब्सोल्युटली लव मैं ग्राहकों को यानी कि लिसनर्स को जगा देती हूँ ना, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जब हम बात कर पाते हैं ना आप और मैं, वो मेरा बेस्ट मोमेंट होता है। फनीशिया आना मतलब सफल हो जाता है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। दिस इज आरजे शिवमी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक। अगले फ्राइडे मिलूंगी और अगर कल या परसों भी आ गई तब भी बता दूंगी कि मिलूंगी। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा इंस्टा पे तो मैं बता रही हूँ, माता रानी का पाप लगेगा आप सबको। फॉलो कर लो इंस्टा पे जल्दी से जाके, आरजे शिवमी है मेरा इंस्टा हैंडल। बस ऐसे ही है, मैं ऐसे ही कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, आपसे बात करती रहती हूँ, इससे ना दुख हमारे सांझे हो जाते हैं और सुख भी सांझे हो जाते हैं। तो इसके लिए कनेक्टेड रहो इंस्टा पे, सो दैट मेरे दुख आपके हों और आपके दुख मेरे हों एंड वाइस वर्सा, सुख भी सांझे करने हमने, ठीक है। इतनी सारी बातें कर ली है मैंने आज। अगले हफ्ते मुझे आंसर चाहिए कि वो कौन सा ऐसा डिल्यूल्यू वर्ल्ड है जिसमें राखी सावंत और वशी राउटोला जी रही हैं। अगर तो आप मेरे दिमाग से खेलोगे, मतलब मेरे वाले लेवल पे खेलोगे, तभी समझ आएगा कि आर्टेमिस 1, 2, 3 जो अभी तक जा चुके हैं, 3 जाने वाला जब भी है, उसमें इन दोनों को बिठा के भेजा जा रहा है एंड एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्रिएट होगी जहाँ पे मल्टीपल उर्वशी राउटेला और मल्टीपल राखी सावंत होंगी। तभी मुझे लगता है हमारा क्या होएगा, री इनकारनेशन ऑल्सो, क्या कहते हैं यार उसको, हमारी जून सफल होएगी, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। आरजे शिवमी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीक। आई होप यू हैव ए ब्रिलियंट वीकेंड, इंजॉय करना, मस्ती करना, मजा करना और ऑफ कोर्स सुनते रहना मुझे, आरजे शिवमी को। टेक केयर।

0: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
0: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में बिल्कुल घर जैसा।
0: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: That voice, the one you've had on repeat, is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Simbuka Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.

वेरी गुड आफ्टरनून टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फनीशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद द सुनहरी किरण. थैंक यू सो मच मेरे साथ आज की दोपहर कनेक्ट करने के लिए. थैंक गॉड इट इज फ्राइडे. एज ऑलवेज जुम्मे का दिन मेरा पसंदीदा दिन है जी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट. दो फैक्टर्स हैं एक्चुअली. वन इज के सैटरडे आ रहा है तो जुम्मे को ही मैं उसकी खुशी मना लेती हूँ, और दूसरा ये है कि फ्राइडेज जो हैं वो 3 बजे से 4:30 बजे तक लेकर आती हूँ किड्स जंक्शन. जी हाँ, बच्चा पार्टी के साथ कनेक्ट करते हैं. तमाम बच्चे मुझे फोन कर सकते हैं 3 बजे से 4:30 बजे तक. फोन लाइंस आपके लिए खुली हैं गाइज. मॉम्स, इफ यू आर हेडिंग आउट टू द स्कूल टू पिक अप योर किड्स, 3 बजे से किड्स जंक्शन शुरू हो जाएगा और बच्चे मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ गपशप करें और साथ ही साथ अपनी पसंद का गाना सुनें. थैंक यू सो मच. दिस इज द मोस्ट हैपनिंग टाइम ऑफ द इंटायर वीक, क्योंकि फोन लाइंस हमारी कॉन्स्टेंटली बस कर रही होती हैं. आई लव टॉकिंग टू ऑल द किड्स एंड आई एम श्योर द किड्स एंजॉय दैट टू. तो लेकिन फिलहाल ये जो अगले 25 मिनट है मेरे आपके साथ, ये मैं आपके लिए लेकर आती हूँ फ्राइडेज को मिक्स पॉट. मिक्स पॉट में कुछ नए गाने और कुछ पुराने गाने आपके लिए प्ले करती हूँ, और इसी तरह से हम फ्लेवर को रखते हैं हमेशा नया. सुनहरी किरण की ये खासियत है, फ्लेवर रहता है हमेशा मुख्तलिफ.

मिक्स स्पॉट सुन रहे हैं आप और आगाज हुआ पर्दे में रहने दो आशा भोसले जी का गाया हुआ ये गाना और इसी जैसा पर्दे जैसा एक गाना जो कि नए जमाने में नए अंदाज में रिलीज हुआ कुछ ऐसा ही गाना आपको सुनाने वाली हूँ अब अगला। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि देखिए आज है फ्राइडे ठीक है और वीकेंड भी आ रहा है और अगर आपका दिल नहीं कर रहा खाना पकाने का और जो है यू नो चाहे लंच हो डिनर हो चाहे आपके घर कोई मेहमान आ रहे हो और आपको हो कि यार घर में खाना नहीं पकाना लेकिन बाजार से तो खाना लाना है रेस्टोरेंट से पर घर जैसा जायका होना चाहिए उसका तो फिर मैं बताती हूँ आपको सोल्यूशन बहुत आसान है। तंदूरी फ्लेम गार्लिन में लोकेटेड है जी बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लाटर्स रिच करीज स्मोकी कबाब्स तंदूरी कबाब्स एज वेल एज वेलवेटी करीज और हॉट फ्रेश नान सब कुछ आपको तंदूरी फ्लेम पे मिलेगा और जो स्पेशल बात है वो घर जैसा होम स्टाइल पंच सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग एट ऑल। कोई भी आपकी कमिटमेंट है या तो आके खाना खाइए या ले जाइए जो भी कीजिएगा घर जैसा ही जायका पाइएगा। नाउ दिस इज अनदर पर्दा नंबर आजकल के दौर का।

0: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
1: Once upon a time in Mumbai से सुन रहे थे आप ये गाना, अजय देवगन, कंगना रनौत और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देख रहे थे हम इस गाने में। और जी अब आगे बढ़ते हैं मिक्स स्पॉट में। जैसे हमने कहा, कुछ नए कुछ पुराने, एक और खूबसूरत पुराना गाना आपके लिए लाइंड अप है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हैं या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल हो सकती है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नंबर वन प्रायोरिटी। उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करना है, लीगैलिटीज, पेपर वर्क, this and that, and nitty-gritties itni sari hain iske andar that you don't want to take a risk. You want to have an attorney by your side jo aapke liye ye sara kaam kare, and that attorney is attorney Umar Khwaja. Ji haan, na sirf wo aapka case ladenge, they will help you get the best compensation that you deserve, and the best part is ke aapko kuch pay nahi karna jab tak ke aap case jeet nahi jate. You don't have to pay anything until you win, so it is a win-win situation for you. You're going through something like that, you know someone who is going through something like that, you must forward them this number. Aap is number pe call kijiye for a free consultation. That number to attorney Umar Khwaja is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number, or visit their website. Lots of information is available at attorneyomar.com. That is OMAR, attorneyomar.com.

यादों की बारात से आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना। अब देखिए, चुरा लिया है तुमने जो दिल को से, चुरा के दिल मेरा गुरिया चलेगा सफ़र, बड़ा खूबसूरत था। तो उसी के कनेक्शन में मिक्स पॉट में अब जो नया गाना आपके लिए प्रेजेंट होगा 90 से आगे का, वो है जी चुरा के दिल मेरा गुरिया चली। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ग्रोसरी शॉपिंग आप कहाँ करते हैं, और क्या हो कि मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसी दुकान है, एक ऐसा रूफ है जिसके नीचे आपको आपकी तमाम देसी ग्रोसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी आपकी। चाहे आपने सब्जियां खरीदनी हो, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने हो, रेगुलर जो हमारे दाल चावल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आटा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, और इसी के साथ अगर आप मीट खरीदना चाहते हैं तो उसका एक ब्रिलियंट सेक्शन है उनके पास, एक्सट्रीमली क्लीन, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और उसके अंदर आपको स्पाइसेस लगे हुए मीट भी मिलेंगे, बहुत कुछ, everything under one roof, and that is Desi Mandi, the biggest South Asian grocery store in Louisville, Texas. जी हाँ, और अगर आप जब आप शॉपिंग कर कुरा के थक जाते हैं, बंदा कहते हैं ना अब शॉपिंग करके थक गए अब क्या खाएं, तो खाने के भी इंतजाम है देसी मंडी में। उनका रेस्टोरेंट है, ब्रिलियंट खाना आपके लिए सर्व करता है, और आजकल बड़ी जबरदस्त वीकडेज की डील लगी हुई है, बोगो यानी कि बाय वन गेट वन एवरी वीक डे 5 PM टू 9 PM मंडे टू थर्सडे। तो मंडे और वेंसडे को अगर आप जाइएगा तो आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा और नूडल्स, बिरयानीज एंड फ्राइड राइस। और अगर आप ट्यूजडे एंड थर्सडे को जा रहे हैं तो यू विल गेट बाय वन गेट वन ऑन डोसास एंड चाट्स। ऑल यू लिसनर्स आउट देयर, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और यू आर लुकिंग फॉर दैट बोगो ऑफर, डू पिक दैट अप, गो टू देसी मंडी ऑन वीकडेज 5 PM टू 9 PM मंडे एंड वेंसडे, बाय वन गेट वन ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, एंड ट्यूजडे एंड थर्सडे बाय वन गेट वन ऑन डोसास एंड चाट्स। सो दैट इज अ ब्रिलियंट प्लेस फॉर यू गाइज टू ईट, enjoy, have a good friendly chat, or all you moms and dads who are shopping, this is the place for you to go. This is Desi Mandi, and now we are talking about aajkal ka chura ke dil mera.

And with this last song, we are heading on to our next segment. इस अगले गाने के साथ जो कि मिक्स स्पॉट का लास्ट गाना है, लेके जा रही हूँ आपको ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आकर इट इज किड्स जंक्शन 3 PM टू 4:30 PM. Guys, I will be live here for you, elementary, middle school, as well as high schoolers. When you are on the road, give me a call.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent, and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
2: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
2: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Chicken banana.
8: चिकन बनाना
9: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
10: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
11: Aaja meri gaadi mein baith ja.
10: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
12: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
10: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो।
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
15: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहाँ मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
16: Astrology readings for guidance only and results may vary.
17: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
18: कितने आदमी थे?
19: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
5: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
4: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
5: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
4: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
5: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
4: नंबर बोल जल्दी।
5: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
6: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड solutions विद 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न। समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
8: बेटा इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
9: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
8: रोज का सेम प्रॉब्लम।
10: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
11: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
12: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
13: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमडी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
14: सब कुछ साफ रख सकते हो
15: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
16: क्योंकि ये कौन बोला?
15: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
13: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
17: मामू देखो क्या हो गया।
18: ओ क्या हो गया?
17: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
18: ओए जर्मन का कमाल है।
17: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
18: ओए नहीं, ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
19: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
20: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
21: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
22: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Arey sunna, aaj office se aate hue maine Frisco mein ek naya store dekha.
7: Kaun sa?
6: Carrot Lane.
7: Wait, what? Carrot Lane? India wala?
6: हाँ वही.
7: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
6: देखा, ढूंढ के दिया ना.
8: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
8: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
10: के टू ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
13: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
15: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
16: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
17: प्लान या होप?
16: मतलब?
17: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
16: ओके, तो मेरा वाला होप है.
17: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
16: क्यों?
17: Because retirement को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
15: Wealth Tactic, retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
18: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
19: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
15: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
20: इससे पहले कि आप इसे एक ऐड समझकर चैनल बदल दें, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं. याद है आपको, जब हम सब परिवार के साथ मेला घूमने जाया करते थे। मेले की रौनक, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू और सबसे खास पापा की कंधों की वो सवारी। अगर इस साल भारत नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंबुजा बाना लेकर आ रहे हैं भारत को आपके पास। बसंत मेला 31 मई हैगड़ पार्क लालो, दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। अपने देश के खाने का स्वाद, संगीत, रौनक और पूरा पारिवारिक उत्सव। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। मिलते हैं 31 मई को, आइएगा जरूर। स्पॉन्सरशिप या बूथ इंक्वायरी के लिए हमें संपर्क करें admin@ambuj.us।
21: Tracks that put you on the right track. The Dill of Dallas. Heart to Heart.

0: इस हरकत ने ही बरकत दी है क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा?
1: That is, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting MedSpa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205. In Frisco, Lunoxy Medical, modern care, warm experience.
2: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So, is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: Shaadi bihaa ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
9: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
16: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो।

जी हाँ जी, श्री राम की आवाज़ में, श्री रामचंद्र की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना, और साथ शिल्पा राव थी। और अगर आपने अब तक टिकट नहीं खरीदे तो नाउ इज़ द टाइम टू गेट योर टिकट्स, क्योंकि श्री रामचंद्र विल बी परफॉर्मिंग लाइव टुडे। एक्सक्लूसिव क्लब एडिशन है ये जी कॉन्सर्ट, एंड वेरी फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ अमेरिका दिस इज़ हैपनिंग। ही इज़ द विनर ऑफ इंडियन आइडल, और दिस इवेंट इज़ प्रेजेंटेड बाई फनेशिया रेडियो। स्पेक्टेकुलर इवनिंग है, आज शाम 8 बजे से शुरू हो रही है संबुका प्लेनो में। तो आइए जरूर अटेंड कीजिए इसको, दिस इज एन अप क्लोज परफॉर्मेंस लाइक यू हैव नेवर सीन बिफोर। और अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं आपको नंबर्स देती हूँ राइट नाउ, गिव देम अ कॉल, गेट योर टिकट्स एंड एंजॉय द इवनिंग। दैट नंबर इज, लेट मी गिव यू टू नंबर्स, द फर्स्ट वन इज 201-884-4254, या फिर आप एक और नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 703-732-1777, happening tonight 8 p.m. only at Sambuca Plenum.

द वेदर अपडेट जो इस गाने से पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी वॉज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. आई होप यू हैव अ लवली वीकेंड एंड रेस्ट ऑफ योर इवनिंग. और अब टाइम आ गया है आपको करेंसी अपडेट देने का. US डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. Today, Friday, May the 15th, 4:46 p.m. in the studio. And according to xrates.com, Euro aaj trade kar raha hai 0.86 pe, jabki British Pound is trading at 0.75. Indian Rupee 95.98 pe stand kar raha hai, jabki Nepali's Rupee 153.65 pe trade kar raha hai. Pakistani rupee 278.59 Pakistani rupees are trading for one US dollar, jabke 122.76 Bangladeshi takas are trading for one US dollar.

And with that, it is time now to give you the gold price update. Aaj Friday, May the 15th, 4:50 p.m. in the studio. Aur goldprice.org ke mutabik, gold price per ounce right now is $4,540.49. Jabki 1 gram sone ki keemat, gold price per gram right now is $145.98. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $4.40 की कमी देखने को मिली, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में 130

0: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
1: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
0: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
2: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
5: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
7: K2 ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
9: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400। K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
12: भाई ऑफिस लॉग आउट हो जाता है, पर दिमाग कभी लॉग आउट ही नहीं होता।
13: बिकॉज इट्स नेवर ट्रेन्ड टू पॉज, दैट्स व्हाई मेडिटेशन मैटर्स।
12: कितने एप्स ट्राई किए यार, बट
13: देन डोंट ट्राई अलोन, एक्सपीरियंस इट एट ओशो ट्रांसफॉर्मेशन रिट्रीट।
2: मे 14th टू मे 17th, अ 3-डे इमर्सिव जर्नी टू रिलीज स्ट्रेस, क्लियर इमोशनल ब्लॉक्स एंड रिकनेक्ट विद योर इनर सेल्फ थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स। रजिस्टर नाउ एट oshouniversal.org। पॉज द नॉइज, meet yourself.
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
15: कितने आदमी थे?
16: सर का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart.
1: Don't you feel the same, guys? 104.9 FM, Funny Joy Radio सुन रहे मेरे साथ. मैं आपकी होस्ट नवनीता. थैंक यू टू किरण, अ बिग शाउट आउट. सो शी वॉज देयर विद यू ऑन दिस फ्राइडे मेरे ही पहले, और इतना सारा एंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है इस शो को. अब मेरी बारी, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आती हूँ फ्राइडे की फ्राइडे, और कहती हूँ द वीकेंड हैज ड्रॉप्ड एंड दैट इज राइट हियर राइट नाउ. कर क्या रहे हैं आप लोग? धीमे धीमे

यस, ये वाला जो गाना आपने धीमे धीमे बहुत जल्दी जल्दी की गाना जो बना है विद धीमे धीमे वर्ड, कितना जल्दी वाला गाना था, राइट? बट दिस इज फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, और ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, प्योर मैडनेस है। एंड दे से कि आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह की कॉमेडी राइट है ये, और इट इज इन योर थिएटर्स, पति पत्नी और वो। हाउ आर यू इन्जॉइंग दिस फ्राइडे इवनिंग? अगर मुझे आपको पूछना हो और आपको ये बताना हो कि यार कुछ भी करो, बस धमाल करो, जिंदगी एक है, दो बार क्या सोचना, टेल मी।

0: वाह।
1: ये पूरा वाव गाना है जवानी तो इश्क होना है, और है जवानी तो इश्क इज द टाइम व्हेन जवानी है। इश्क के लिए कोई वक्त देखा नहीं जाता सच पूछे तो, बट यस द यू आर मोस्ट ससेप्टेबल टू फॉल इन लव व्हेन यू आर नॉट कमिटेड। और ये वाला जो जियो फिल्म है वापस से बन रही है, विच इज़ सुपर डुपर। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो, मेरे साथ, मैं आपकी होस्ट नवनीता। पता है समटाइम्स वी हैव टू ईट आवर वर्ड्स, खाने पड़ते हैं। च्यू आर ईगो, स्वॉलो आर प्राइड एंड एक्सेप्ट दैट वी आर रॉन्ग। इट्स नॉट गिविंग अप, इट्स कॉल्ड ग्रोइंग अप। और पता है ये स्पेशली उस समय काम आता है व्हेन वी हैव टीन एज चिल्ड्रन। यू हैव टू ईट योर वर्ड्स, च्यू योर ईगो, स्वॉलो योर प्राइड एंड एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। इट्स नॉट गिविंग अप, इट्स जस्ट ग्रोइंग अप। छोटा सा ब्रेक ले रहे दोस्तों, आप कहीं मत जाएगा। ये जो साथ है आपका मेरा, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहेगा ये साथ। और वैसे होता ऐसा है कि होती हूँ मैं माइक के इस पार, आप होते हैं माइक के उस पार, मुलाकात हमारी होती है ऑन द मझधार, ऑन द एयरवेज ऑफ 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो। एंड वी आर सो एक्साइटेड कि आप हैं जो हमें सुनते हैं हमेशा, सुबह शाम दिन रात रोज़ाना हर हफ्ते। और हम आते हैं हंसते हंसते, चाहते हैं बस आपकी एक मुस्कान। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर दैट अमेजिंग मुस्कान। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
8: सब कुछ साफ रख सकते हो
9: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
10: क्योंकि ये कौन बोला?
9: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
11: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
6: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
0: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
13: अरे यार, Dallas में पंजाब?
12: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
14: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
15: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM. Fun Asia Radio.

सुन रहे हैं 104.9 FM, नवनीता ये क्या है, यही चला देगी क्या? यस, बिकॉज देयर वाज दिस अमेजिंग कॉल. 7-year-old नू का जन्मदिन है, नहीं है, और वो है एक हमारे डैलस के वासी 7-year-old नू, एंड दे आर हैविंग अ फन टाइम ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 24/7, जो हमारे डैलस में हर समय गूंजता रहता है. हमारी जो वादियाँ हैं डैलस की, जो हार्डली है बट एयर ऑफ डैलस इज फिल्ड विद 104.9 FM फन एजर रेडियो का म्यूजिक, और ये वाला गाना नू आपके लिए. इंजॉय सुपर सॉन्ग, मूड बना दिया.

सुपा हवार, ये तो सनम की का ये गुलाबी आंखें हैं। नो दैट वाज अ ग्रेट चॉइस ऑफ सॉन्ग दैट यू प्रेजेंटेड टुडे। एंड यू नो समबडी सेज यू नो हाउ समटाइम्स वी स्मैक अ रिमोट व्हेन इट डजंट वर्क। आई फील द सेम व्हेन अबाउट पीपल, स्मैक देम व्हेन दे डोंट वर्क। ओ स्मैकिंग नॉट अलाउड दो। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एजा रेडियो। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों ट्यून इन करने के लिए। और आपको बताओ ड्रीम होम मॉर्गेज जो हैं वो हैं जो हेल्प करते हैं हमारी फैमिलीज़ को टू अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998। लाइसेंस इन ऑल 50 स्टेट्स, द एक्सपर्ट टीम डिलीवर्स स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस। मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मॉर्गेज। आप डिटेल्स के लिए फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-245-5626 और विजिट ड्रीम होम मॉर्गेज.com।

104.9 FM Fun Asia Radio, ये है आपका रेडियो स्टेशन. सुन रहे हैं ये अमेजिंग सॉन्ग्स.

Sanam has been, these four people who have made some old music and owned it in a different manner. And strangely, they got so popular doing that. And unki awaaz mein ek different si voice quality hai jo hamare andar bas gayi. It did not bother us. And they are very, very followed. I mean, people love their songs and jo पुराने गाने हैं हमारा जो दिल वो पुराने गानों में इन्वेस्टेड होता है यू रियली डू नॉट लाइक द न्यू वंस क्विकली बट दैट डिडंट हैपन सो मच विद सनम बिकॉज दे हैव ग्रोन ओनली ऑन डूइंग दीज रीमिक्सेस एंड दैट इज जस्ट वर्क्ड फॉर देम एंड दे आर जस्ट पिकिंग अप द सॉन्ग्स एंड गोइंग ऑन सिंगिंग इट 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं और ये जो शाम हो जाती है ना डैलस की शाम और होने के बाद साथ साथ निकल जाता है ये समय एंड देन द समर कम्स इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू वेट फॉर समर आज का दिन इतना खास है विद द वेदर दैट वी हैव टोटली हैव फन इन दिस वेदर एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे

0: आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन फील गुड फ्राइडे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville, Dallas का सबसे बड़ा देसी grocery स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट

0: गाड़ी लाने में जाए यार।
1: German Motors, keep your drive flawless.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
4: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
5: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682-346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
7: Astrology readings for guidance only and results may vary.
8: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
9: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to FunAsia Radio.
10: Welcome back, home back at 104.9 FM, FunAsia Radio पर। कहीं खो गई हूँ, इसलिए खुद को ढूंढने लगी हूँ। बहुत दर्द मिला है सबसे, इसलिए अपने काम से काम रखने लगी हूँ। बहुत चुभती थी मेरी शिकायतें, इसलिए अपनी जुबान पर लगाम रखने लगी हूँ। बहुत बार भरोसा टूटा है, इसलिए अब विश्वास के नाम से डरने लगी हूँ। कहीं खो गई हूँ, इसलिए खुद को ढूंढने लगी हूँ।
11: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट।

0: है तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। आप ना ना करें या हाँ हाँ, एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है दोस्तों, हमको हाँ हाँ ही करना पड़ेगा, चाहे आप ना ना करें। यू वॉन्ट टू लिसन टू द म्यूजिक, यस, कमिंग जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जाएगा मत कहीं, क्योंकि हम रहने वाले हैं आपके साथ, और ये 5 से 8 का साथ आपके साथ।
1: नेशन का फन स्टेशन, फन एशिया रेडियो।
0: मौसम का हाल आने वाला है ब्रेक के बाद, और बहुत सारे गाने, बस बने रहिए।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
4: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
8: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
7: रोज का सेम प्रॉब्लम।
9: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
10: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
11: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
12: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करे फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
13: I've been researching retirement planning.
14: Oh, really? Where?
13: Google, YouTube, a guy on TikTok.
14: Or you could just talk to WealthTactic.
13: What's the difference?
14: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
5: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
15: Desi cravings simple nahi hoti, unke levels hote hain. Level 1, mixed veg pakora, light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla, thora nostalgia, thora comfort. Level 3, amritsari kulcha platter ya pindi chana, full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar, rich, bold, no compromises.
5: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
4: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
0: स्वागत है आप सबका। ये वाला सेगमेंट जो है इज आवर स्टार कलाकार को मुबारकबाद देने का सेगमेंट। बहुत ही खास कलाकार का आज जन्मदिन है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सेलिब्रेट दिस सेलिब्रिटी। सम स्टार्स बिकम सक्सेसफुल, सम बिकम लेजेंड्स, बट वेरी फ्यू बिकम इमोशंस। जिनको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हैं हु स्माइल लिट अप स्क्रीन्स, whose expressions became iconic and whose dance moves still live rent-free in our hearts. Can you guess? Happy birthday to this forever grateful, forever magical, jinhone hame ginti bhi sikhai hai.
20: Main karti hu pyar aur jisse karti hu minnatein

कितने बच्चों ने ये गाना सुन के 1 से 13 तक तो हिंदी सीख ली थी, दैट इज माधुरी दीक्षित, पता है. लेकिन कैन यू इमेजिन द वुमन हु लेटर रूल बॉलीवुड वंस फेस रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन. पर हो सकता है डेस्टिनी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्पॉट. वैसे इनकी फर्स्ट फिल्म थी अबोध 1984 में, और वो फिल्म काम नहीं की बिल्कुल भी. इन फैक्ट सेवरल ऑफ हर अर्ली फिल्म्स फेल्ड. कुछ समय तक तो वो सिर्फ एक अनदर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रही, ट्राइंग टू सर्वाइव इन बॉलीवुड. पर 1988 आया और ये एक गाना चेंज्ड एवरीथिंग. तेजाब और 1 2 3 और ये पिंक एंड वाइट आउटफिट ऑफ माधुरी दीक्षित, एंड शी बिकेम अ सेंसेशन. हर एक्सप्रेशंस, हर डांस, हर स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग एक्सप्लोडेड. People literally went to theaters again and again and again just to watch the song. Ye gana. Today, songs trend for 3 days. Aur phir gayab ho jate hain. Lekin Madhuri's songs became part of generations and generations.

सुपर दैट इज आवर माधुरी दीक्षित द ब्यूटिफुल क्वीन. पता है वैसे ब्यूटी से याद आया, शाइन ब्राइट कीजिए विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. डैलस में है ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. From classic solitaires to contemporary styles, their diamond collection blends superior quality with timeless design, perfect for engagements, anniversaries or just celebrating love. Ab download kar lijiye na ye mobile app ko now for more details. Madhuri Dikshit, itni khoobsurat, lekin pata hai, इट इज़ नॉट जस्ट अ ब्यूटी, वॉट मेक्स अ डिफरेंस इज हर एक्सप्रेशंस. जैसे कि पूरा शरीर उनका एक्सप्रेसिव है, ग्रेस, द एलिगेंस, द कॉमिक टाइमिंग, द वे शी जस्ट जम्प्स ऑन इट, और उनकी इमोशनल डेप्थ भी. क्लासिकल डांस ट्रेनिंग जो उनकी कथक में हुई, वो सच बोलिए तो बचपन में उन्होंने कथक सीखा था, दैट बिकेम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थ्रू आउट हर लाइफ इन हर करियर ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस. उनके इमोशंस एंड उनके जो एक्सप्रेशंस में भी कथक नज़र आता है, और उनकी एक नेचुरल चार्म है. शी कुड डू कॉमेडी, शी कुड डू रोमांस, ड्रामा, इंटेंस इमोशन, क्लासिकल डांस, कमर्शियल मसाला. शी डिडंट जस्ट परफॉर्म सॉन्ग्स, शी लिव्ड देम.

0: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता।
1: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग।
0: ओह गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है।
1: हाँ, आई कीप दैट पाथ सिंपल।
0: कैसे?
1: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे।
0: ओह, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी।
1: या कैरेट लेन काइंड।
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry, made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
4: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
8: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
9: That is, what if going to a clinic actually felt enjoyable? On May 16, step into a whole new healthcare experience at Lunoxy Medical, Texas Primary and Urgent Care's Grand Ribbon Cutting from 2 p.m. to 4 p.m. in Frisco. Sip from a custom latte bar, enjoy nothing bun cakes, ice cream and more while touring their modern state-of-the-art clinic. Plus, enter their grand opening raffle for a chance to win exciting Med Spa prizes. Visit Lunoxy Medical at 9191 Kaiser Way, Suite 205 in Frisco. Lunoxy Medical. Modern care, warm experience.
10: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
11: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
10: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
12: The one you've had on repeat is about to come alive. Fun Asia Radio presents Indian Idol winner Shri Ram Chandra Live Club Edition. For the first time in North America, step into the evening of soulful music, live energy and unforgettable vibes at Sambuca Plano on May 15th, 8 p.m. onwards. This event is co-partnered by Ultra Entertainments and Lit Stage. Tickets available on Sulekha and seats are limited. For more information, call 703-732-1777.
13: थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। स्वागत है आप सबका 104.9 FM और ये जो मेरा सेगमेंट है स्टार कलाकार को मुबारक में, हम माधुरी दीक्षित को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आप किसी का जन्मदिन हो तो फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। 90s जो था ना, ट्रूली बिलोंग टू माधुरी। हम आपके हैं कौन? दिल, साजन, बेटा, खलनायक, देवदास, turned her into the face of Bollywood. एक समय था जब producers sign करते थे films because of her. Audience सिर्फ वो गाने देखने बार बार film theatres में जाती थी. Actresses copied her style और salons उनकी recreate करती थी the माधुरी smile, पूरा makeup around her. जब social media influences नहीं थे ना, उनके पहले कौन था पता है? माधुरी दीक्षित, influencing an entire generation.

ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ये शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, और इसमें हमें करीना कपूर की बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी नजर आई, एंड शी ऑल्सो स्टोल आवर हार्ट्स इमेंसली. बट जन्मदिन है माधुरी दीक्षित का. वैसे रियांश भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 9th बर्थडे. वेरी वेरी नाइस रियांश, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपकी मॉम टीना और आपके डैड निशांत, आई नो यू गाइज आर टोटली इन द कार लिसनिंग टू द सॉन्ग्स एंड रियली सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. सो स्वीट, दिस वे ऑफ गोइंग टू द टेम्पल इज ब्यूटिफुल ऑन योर बर्थडे. ले लीजिए अब सारी की सारी दुआएं ऊपर वाले से, और ले लीजिए सारा ब्लेसिंग्स, एंड दैट इज टू यू रियांश, 9-year-old. सुपर. हम मना रहे हैं वैसे माधुरी दीक्षित का जन्मदिन, सो जन्मदिन तो किसी का भी हो, बस मनाते हैं हम स्टाइल में ऑन फनेजा रेडियो. माधुरी दीक्षित नेवर चेज ट्रेंड्स, शी बिकेम टाइमलेस इंस्टेड, एब्सोल्युटली. और अपने पीक ऑफ अर करियर, ये तो बहुत हिम्मत चाहिए ये काम करने को, पीक ऑफ अर करियर माधुरी शॉक्ड एवरीवन बाय स्टेपिंग अवे फ्रॉम बॉलीवुड आफ्टर मैरिज. यूएस मूव हो गई, हमारे नज़दीक आ गई, फोकस्ड ऑन फैमिली लाइफ, रेज्ड चिल्ड्रन अवे फ्रॉम कॉन्स्टेंट लाइमलाइट, और फिर इतने सालों के बाद शी रिटर्न विद द सेम ग्रेस पीपल फेल इन लव विद. उसे स्टारडम कहते हैं, है ना, ट्रू स्टारडम. When people don't forget you even after years, उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक लिया था, बट वो ब्रेक लगा ही नहीं जब वो वापस चली गई, doing such a good job with her two boys and staying away from the limelight.

That is beautiful, Madhuri Dikshit, जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर. 15 मई को रहता है उनका जन्मदिन एंड टुडे शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. माधुरी दीक्षित, मे यू लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट, जैसे कि आपने हमेशा कमांड करके ही रहा जीता है अपना जो यू हैव ऑलवेज कमांडेड योर लाइफ द वे यू वॉन्टेड, बिन द वे यू वॉन्टेड. और ये वाला जो गाना है, नेक्स्ट वाला जो बजने वाला है, दिस इज आवर डेडिकेशन टू माधुरी, बिकॉज ये सारे एडजेक्टिव्स जो इस गाने में हैं टोटली गोज आउट टू माधुरी. एंड अ बिग शाउट आउट टू हुमा, आप सेलिब्रेट कर रही हैं अपना जन्मदिन. आपकी मॉम फातिमा ने कॉल किया और मुझे बताया कि आपका भी जन्मदिन है माधुरी की तरह. ब्यूटिफुल, आई एम श्योर यू आर एज वेल एंड यू ऑल्सो हैव ऑल दीज एडजेक्टिव्स फॉर यू.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
3: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
2: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
4: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
9: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
8: K2 ड्राइव मतलब
9: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है। लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
8: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
9: 100%
10: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next